मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ डीटीएच की ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल का प्रसारण। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी।

0: वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

हम लोग हमेशा ये कहते और सुनते आए हैं कि परमात्मा ने जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वही जीवन हमें जीना है। पर जब हम अपने चारों ओर के वातावरण में इंसान के कर्मों पर एक नजर डालते हैं तो पाते हैं कि परमात्मा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्तव्य ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए आइए ईश्वर की आराधना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलें, चलते चलें।

एक इंसान दूसरे इंसान का आकलन बड़ी आसानी से कर लेता है, पर इंसान को प्रतिदिन सबसे पहले अपने स्वयं का आकलन करना चाहिए। हमारी अच्छाइयां, हमारी बुराइयां, इन सब से हमें स्वयं को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि जहां हम नहीं होते हैं वहां हमारे गुण और हमारे अवगुण ही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं।

तुम रात में आकाश में बहुत से तारे देख सकते हो, परंतु सूर्योदय के बाद नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सूर्योदय के बाद अर्थात दिन में तारे ही नहीं होते? इसी प्रकार यदि कोई अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर को नहीं देख पाता, उसकी अनुभूति नहीं कर पाता, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर है, हम सबके चारों तरफ है, प्रकृति के कण कण में है और हमारे अंतर मन में भी है। आइए उसका ध्यान करें, उसकी आराधना करें।

कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अच्छे कर्मों से ही भाग्य बनता है। अच्छे कर्म करो, ईश्वर की आराधना करो, भाग्य स्वयं अच्छा बन जाएगा।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण रचना के बाद अनुराधा पौडवाल, कमल हंसपाल, पुष्पा पागधरे और छाया गांगुली के गाए भजन सुने। इसके साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

राजा दशरथ के आंगन में शिशु रूप श्री राम की क्रीड़ा देखते हुए काकभुशुंडी पर माया का प्रभाव होता है। कौतूहल जनित भ्रम से काकभुशुंडी को आश्चर्यचकित देख श्री राम मुस्कुराए। हाथों और घुटनों के बल चलते हुए वे कौवे को पकड़ने दौड़े। कौवा उड़कर भाग चला। मुड़कर देखा तो श्री राम की भुजा उनके ठीक पीछे, मानो अभी उसे पकड़ लेगी। काकभुशुंडी आकाश में जिधर उड़ते, भुजा उनके ठीक पीछे। उड़ते उड़ते काकभुशुंडी ब्रह्मलोक पहुंच गए, फिर भी भुजा ठीक पीछे उतने ही पास। सातों आसमान पार कर काकभुशुंडी जहां भी गए, पीछे मुड़कर देखा तो वही परिदृश्य। और तब भयभीत होकर उन्होंने आंखें मूंद ली। जब आंखें खुली तो फिर अपने को अयोध्या में पाया। श्री राम ठठाकर हंस पड़े। उनके मुंह खोलते ही काकभुशुंडी बरबस उसमें प्रविष्ट हो गए। पेट में जो पहुंचे तो वहां अनेक ब्रह्मांड परिलक्षित हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मीडिया वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और साथी वेब से ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख डॉक्टर समर बहादुर सिंह का है।
1: पटना में गंगा तट पर स्थित सदाकत आश्रम, राजेंद्र बाबू की स्मृतियों का जीता जागता आगार। आश्रम भवन में प्रवेश करते ही सामने टंगी तख्ती पर नजर पड़ी। सुनहले अक्षरों में लिखा था, हारिये ना हिम्मत, बिसारिये ना हरि को नाम, जाहि बिधि राखे राम, ताहि बिधि रहिए। बात मन पर छा गई, लौटी तो बार बार वही प्रतिध्वनि आ रही थी। कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं रास्ता रोक लेती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें, बचाव का रास्ता ढूंढते हैं, और अगर तुरंत वो नज़र नहीं आता तो हम साहस खो बैठते हैं। कुंठा और निराशा हम पर हावी हो जाती हैं, किंतु क्या यही पौरुष है? क्या बाधाओं से हम जूझ नहीं सकते? और फिर क्या जीवन बाधा मुक्त हो सकता है? जीवन तो संघर्षमय है, इसमें बाधाएं आएंगी ही, उनसे छुटकारा कभी संभव हो ही नहीं सकता। फिर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यदि हमारा जीवन संघर्ष विहीन हो जाए तो क्या जिंदगी का मजा जाता ना रहेगा? संघर्ष है तभी तो जीवन है, तभी तो प्रगति है, तभी तो आत्मसंतोष है। यदि संघर्ष नहीं रहा तो विजय कहाँ, और विजय नहीं तो विजयोल्लास कहाँ? हम प्रायः यही चाहते हैं कि परिस्थितियाँ सदा सर्वदा हमारे अनुकूल रहें। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, किंतु स्मरण रहे, अनुकूल परिस्थितियाँ सदैव सर्वत्र संभव नहीं। प्रकृति का कुछ विधान ही ऐसा है कि परिस्थितियाँ सदैव एक सी नहीं रहती, अनुकूल प्रतिकूल हुआ करती हैं। और जब ये सार्वभौमिक सत्य है तो इससे हम घबराएं क्यों? परिस्थितियों के बदलने की बजाय हम अपने को ही क्यों न बदल डालें? ये सब अंतर है दृष्टिकोण का। जहाँ हमारा दृष्टिकोण बदला, परिस्थितियाँ भी बदल गईं। घर में हम चाहते हैं परिवार के सदस्य हमारे जैसा आचरण करें, हमारी

0: अनसुनी ना करें। ऑफिस में काम करने वाले चाहते हैं कि उनके सहयोगी और अफसर मनचाहे हों और सदैव मनचाहे ढंग से ही कार्य करें। समाज में जहाँ भी हो, हमारी यही कामना रहती है कि वातावरण सर्वथा हमारे अनुकूल हो। किंतु ये सदैव संभव कैसे हो सकता है? जितने मनुष्य उतने ही स्वभाव, तो फिर उनके व्यवहार में एक रूपता कैसे आए? कुछ ना कुछ अंतर तो रहेगा ही, उनके अनुसार हम अपने को ही क्यों न ढाल लें? परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का अभ्यास प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, किंतु बाधाओं के बिना विकास कहाँ? कठिनाई के क्षणों में ही तो हमारी छिपी शक्तियां प्रकट होती हैं। यदि चुनौती नहीं तो उत्तर कहाँ, और यदि उत्तर नहीं तो विकास कहाँ? लेकिन प्रायः होता क्या है, आपदा में हम धैर्यहीन हो जाते हैं, साहस खो बैठते हैं, भाग्य को कोसते हैं और फिर जिंदगी दूभर बना लेते हैं। तो फिर हम करें क्या? असफलता, खिन्नता तथा कुंठा के क्षणों का अवसाद कैसे दूर करें? इन प्रश्नों का उत्तर सदाकत आश्रम में अंकित राजेंद्र बाबू का ये प्रिय कथन हमें देता है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम हिम्मत न हारें, प्रभु नाम का स्मरण करते रहें और वो जिस तरह रखना चाहे रहें, उसकी मर्जी में ही हमारी मर्जी हो। अखिलेश्वर को हम चाहे जिस नाम से पुकारें, अल्लाह, खुदा, गॉड आदि आदि, सत्ता एक ही है, नाम अनेक हैं। विश्व का नियामक ही भगवान है, यदि उसमें हमारी आस्था है तो हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें, बस अपना कर्तव्य करते रहें सजग और सचेत होकर। योगः कर्म सुकौशलम्, कर्म कुशलता ही योग है। और यदि कर्तव्य पथ में बाधाएं आए तो आया करें, उनको प्रभु का प्रसाद समझकर साहस से उनका सामना करें। बाधाओं से जूझ कर ही इंसान इंसान बनता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख डॉक्टर समर बहादुर सिंह का था। मीडियम वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज का विषय है केंचुआ खाद से मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ाएं। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रीति छड़ीदार।
2: श्रोताओं, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे केचुआ खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर। श्रोताओं, केचुआ खाद पोषण पदार्थों से युक्त एक उत्तम खाद है। ये केचुओं द्वारा वनस्पतियों, गोबर और भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। इसके मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% फॉस्फोरस और 1 से 2% पोटैश होता है, तथा कुछ अन्य सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अन्य गोबर की खाद बनाने की तुलना में मात्र इसमें 1 से 1.5 महीना लगता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद बनाने की विधि के बारे में। केचुआ खाद बनाने के लिए क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, परंतु मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट की पक्की क्यारियां बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर रखना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए क्यारी के ऊपर छप्पर से ढकते हैं, जिससे केचुए प्रभावित ना हों। क्यारियों को भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां, घास एवं सब्जी के छिलके एवं गोबर आदि को लेकर 80% पौधों की पत्तियां एवं घास, 20% गोबर आदि को मिलाकर 15 से 20 दिन के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब कचरा 15 से 20 दिन बाद आधा गलने जैसा हो जाता है, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। अधगले कचरे को 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर देते हैं। इसके बाद केचुओं को कचरे में डालते हैं और क्यारियों को गीले सूत के बोरे से ढक देते हैं और समय समय पर गीला

करते रहते हैं, जिससे खाद की नमी 30 से 40% बनी रहे। जैसे ही 40 से 45 दिन हो जाते हैं, खाद बनकर तैयार हो जाती है। श्रोताओं, उत्तम प्रकार की खाद की पहचान ये है कि खाद चाय की पत्ती समान दिखने लगती है। इसके बाद खाद को गड्ढे से निकाल कर ढेर बनाकर साफ सुथरी जगह पर रखते हैं और फिर मोटे छिद्र वाली छलनी से छान कर केचुआ और खाद दोनों को अलग कर लेते हैं। किसान भाइयों, इस खाद के कई लाभ हैं, जैसे ये मिट्टी में जलधारण क्षमता बढ़ाती है। प्रति एकड़ 2 टन की मात्रा की आवश्यकता होती है, जो अन्य खाद की मात्रा में आधे से भी कम है। केचुओं द्वारा निर्मित खाद के उपयोग

0: केंचुए के द्वारा बहुत से हार्मोन निकाले जाते हैं जो पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं। इस खाद में अन्य खाद की तुलना में एनपीके भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और ये खाद कम समय में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इस खाद को बनाते समय कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, जैसे 30-40% तक खाद पर नमी बनाए रखें, आंशिक सड़ा हुआ पदार्थ ही उपयोग करें और क्यारियों को लाल चींटियों से बचाएं। तो किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रीति छड़ीदार से, केंचुआ खाद से मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर कृषि चर्चा। इसी के साथ ही कृषि चर्चा यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:50 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य

0: और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। नमस्कार भोपाल में आज के आकर्षण हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस पर क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निपुण माधव से चर्चा। साथ ही सुनेंगे कैसा हो आज का बाल साहित्य। इस विषय पर बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक डॉक्टर महेश सक्सेना से बातचीत। और साथ ही आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल द्वारा आयोजित वॉकेथॉन की जानकारी। जानकारी देंगे आयोजन के नोडल अधिकारी मनीष गजबिये। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आप सुन सकते हैं गांधी चर्चा। 9:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 10 बजे का समय है जिले की चिट्ठी का। 10:05 पर आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम महिला संसार। इसमें आज का आकर्षण है सजीव फोन इन कार्यक्रम। विषय होगा आओ सखी बात करें। जो महिला श्रोता इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो 2660902 पर कॉल कर सकते हैं। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में पंडित भीमसेन जोशी का गाया ख्याल। गायन राग होगा गुजरी तोड़ी। ग्यारह बजे का समय है फोन इन कार्यक्रम का। फोन करें गीत सुने का। और जो श्रोता फोन इन कार्यक्रम या बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो 10:30 से फोन कर सकते हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। 12 बजे का समय है आपकी फरमाइश का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की 9वीं कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति हैं। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:15 पर और रात 9:45 पर। आपकी फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर और रात 10 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं, इस विषय पर जानकारी देंगे।

0: नमिता चंदेल। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का गाया ख्याल गायन, राग होगा भीम पलासी। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज दिन भर के कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था कल रवाना। आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हराया। आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों के पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित और सुरक्षित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। ये जत्था आज सोमनाथ पहुंचेगा। जत्थे को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है।
1: गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में ढसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है।
0: संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाली जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति तुलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है। उच्च

0: शिक्षा विभाग के ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 15 मई है। पंजीयन 1 और 2 मई से शुरू हुआ था और कल तक विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में कुल 60,000 से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। प्रथम चरण की आवंटन सूची 20 मई को ई प्रवेश पोर्टल पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई और काजल सटोरिया को आवंटन आदेश पत्र और मकान की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिनेश मौर्य को 50,000 रुपए की ऋण राशि का चेक प्रदान किया। डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पूजा गिरी गोस्वामी को सहायता समूह के लिए 2,00,000 रुपए से अधिक की ऋण राशि का भी चेक प्रदान किया। राज्य सरकार ने डॉक्टर निवेदिता शर्मा को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कल अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर निवेदिता शर्मा का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पूरे होने तक रहेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुँच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के 9 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 60 से ज्यादा जाने माने पत्रकार, संपादक और विचारक शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के 90 साल पूरी होने के जश्न में आज सुबह 8:30 पर भोपाल में एक खास वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। श्यामला हिल्स स्थित आकाशवाणी भोपाल केंद्र के दफ्तर से इस वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह आयोजन रेडियो की इस ऐतिहासिक यात्रा को सलाम करने का एक अनोखा तरीका है। प्रदेश में कुछ हिस्सों में कल आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल रीवा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, जबकि ग्वालियर, नौगांव, सीधी और सतना में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इसके आसपास बना रह सकता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बारिश होने से बाधित इस मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर माधवराव सिंधिया जिला खेल स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुरक्षा सुधार कार्य किए जाएं। सतना में जिला पशु कल्याण समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने गौशालाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा में जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूरा कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। झाबुआ में आज सांसद अनीता चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। मंडला जिले के आकांक्षी विकासखंड नारायणगंज में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की कल संभागायुक्त धनंजय सिंह द्वारा समीक्षा की गई। शाजापुर जिले और शुजालपुर तहसील में कल नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। धार में वन विभाग द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता वृद्धि के लिए प्रदेश की पहली एआई ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

खुशी आत्मा का भोजन है दोस्तों, ऐसे शक्तिशाली भोजन का नित्य सेवन जरूर करें। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन आज के सफर में। दोस्तों, चीनी में एक कहावत है, पहाड़ को अपनी ऊंचाई बताने की जरूरत नहीं है, घाटी उसे जानती है। अर्थ यह है कि आपको किसी के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच शक्तिशाली, बुद्धिमान या प्रतिभाशाली हैं, तो लोग इसे स्वाभाविक रूप से देख ही लेंगे, भले ही आप कितने ही चुप रहे। सच्ची महानता शोर नहीं मचाती, ये अपने आप स्पष्ट होती है। आपने महसूस भी किया होगा कि कुछ लोग बड़े शांत रहते हैं जीवन में, फिर अचानक सा कुछ बड़ा सुनाई देता है उस व्यक्ति के विषय में या जीवन में। गहरा पानी और गहरे व्यक्ति शोर नहीं मचाया करते, बस चुपचाप सब कुछ अपने अंदर समेटे वक्त का इंतजार किया करते हैं। इसलिए किसी की भी काबिलियत का अंदाज़ा उसके बोलने से बिल्कुल भी मत लगाइएगा दोस्तों। कोशिश कीजिएगा कि हम नहीं, हमारा काम बोले। और इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम के आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

रंग बदलता मौसम हो या ठंडी गर्म हवाओं का हाल, सब कुछ लेकर आता है नमस्कार भोपाल। आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम के रंगों को। आज हम बात करेंगे विश्व थैलेसीमिया दिवस पर, चर्चा होगी कैसा सृजित हो आज का बाल साहित्य, साथ ही जानकारी देंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित वॉकेथॉन की। पर फिलहाल कार्यक्रम में वक्त समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का।

0: सबसे पहली खबर में पद्मश्री से सम्मानित प्रदेश के 8 कलाकारों के संघर्ष और उनकी कला को फिल्मों में सहेजा। मध्य प्रदेश के ट्राइबल म्यूजियम ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की है। म्यूजियम ने प्रदेश के 8 पद्मश्री कलाकारों के जीवन और उनके संघर्षों पर अक्राइबल दस्तावेजों फिल्म तैयार करवाई है। इस प्रोजेक्ट का मकसद इन दिग्गजों की कला, निष्ठा, जीवन की कठिनाइयों को आने वाली पीढ़ियों के लिए दस्तावेजों के रूप में सहेजना है। और ट्रैफिक सुधार ने तलैया से भारत टॉकिज तक बनेगी स्टॉप लाइन। भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस, अतिक्रमण अमला और नगर निगम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। शहर के व्यस्त मार्गों पर यातायात को व्यवस्थित करने और जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से स्टॉप लाइन बनाई जा रही है। ये लाइन तलैया थाना क्षेत्र में भारत टॉकिज तक तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्टॉप लाइन बनने से वाहन चालकों को निर्धारित स्थान पर रुकना पड़ेगा, इससे व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा नहीं पाएगी। और सिंघस से पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनेगा तीसरा फुट ओवरब्रिज। उज्जैन में होने वाले सिंघस्थ मेला 2028 को लेकर रेलवे ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने भोपाल जंक्शन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने की योजना तैयार की है। इसी के तहत भोपाल रेलवे स्टेशन पर तीसरा फुट ओवरब्रिज तैयार किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये ब्रिज बीना चोर की ओर तैयार किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई करीब 156 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर होगी। और शाने भोपाल में बढ़ेगा थर्ड एसी का कोच। यात्रियों का लगातार बढ़ती जनसंख्या और ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने भोपाल एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। इस कोच के जुड़ने से ट्रेन में करीब 72 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे। और छुट्टियों में खिलखिलाहट का मैदान, टीटी नगर स्टेडियम के समर कैंप में खेल, फिटनेस और मस्ती का अनोखा संगम। गर्मी की छुट्टियों को यादगार और एक्टिव बनाने के लिए टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित समर कैंप बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां खेल, फिटनेस और मनोरंजन का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है, जहां बच्चे पूरे उत्साह के साथ नई गतिविधियां सीखते नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में बच्चों की चहल पहल देखते ही बनती है। कोई फुटबॉल के मैदान में दौड़ लगाता दिखाई देता है तो कोई बैडमिंटन, टेबल टेनिस में अपने हाथ आजमा रहा है। वहीं कराटे, जूडो और बॉक्सिंग जैसी गतिविधियों में बच्चे आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं। स्केटिंग ट्रिक पर बच्चों का संतुलन और आत्मविश्वास देखने लायक रहता है। समाचार पत्रों से फिलहाल इतना ही, पर कार्यक्रम में जानकारी, मुलाकातों और मनोरंजन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं जुबिन नौटियाल और आकाशवाणी भोपाल के सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: जी हाँ दोस्तों, आपने अपने रेडियो सेट, मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आइए मुलाकात करते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों, आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या ज़्यादा है और थैलेसीमिया के मरीज जागरूकता के अभाव में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में थैलेसीमिया के विषय में जानकारी बहुत ज़रूरी क्यों है, ये चर्चा हमसे कर रहे हैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निपुण माधव।
2: लेवल पे मैं बता दूं, थैलेसीमिया एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि मदर या फादर के थ्रू जेनेटिकली ये जनरेशंस में पास ऑन होती है। हम बात करें तो थैलेसीमिया दो टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा, बट हमारे पास रीजन वाइज अलग अलग हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो थैलेसीमिया मेजर है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें अनीमिया, जिसको हम कहते हैं खून की कमी होती है, वो सबसे कॉमन है, वो थैलेसीमिया मेजर होता है। इसमें बच्चों को बहुत ही यंग, एक दो साल के अंदर ही उनमें पता चल जाता है कि उनको ये लक्षण आ रहे हैं। लक्षण आने का बेसिक क्राइटेरिया है कि एक CBC की रिपोर्ट से हम वो पता कर सकते हैं इसको थैलेसीमिया है कि नहीं है। ये माता पिता जो थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं, उन दोनों से मिलकर ये बच्चे में आता है, और इसका अगर हम टाइमली इसमें अप्रोच करें तो हम इसको आगे रोका जा सकता है। शादी के टाइम पे जब अगर कुंडली के साथ साथ हस्बैंड वाइफ दोनों एक HPLC, एक बहुत छोटी सी जांच है, वो कराएं, जिसको हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों में थैलेसीमिया है कि नहीं है, और आगे आने वाली जनरेशंस को हम उसमें बचा सकते हैं। जैसे अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो बच्चे में आने के ट्रेट ज़्यादा रहते हैं। थैलेसीमिया माइनर को हम ऐसे जनरली हम उसे एक बीमारी नहीं मानते, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर में कुछ ज़्यादा इंटरवेंशन ज़रूरत रहती नहीं है। सेकेंड स्टेज पे आते हैं तो उसे हम कहते हैं थैलेसीमिया मेजर, जिसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जो भी बच्चे इनसे ग्रसित होते हैं, इनको हर 20 से 25 दिन में एक यूनिट ब्लड लगता है, और ये ब्लड लगते लगते इनके अंदर आयरन इतना ओवरलोड हो जाता है, आयरन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उनको हमें चिलेशन करना पड़ता है, यानी कि आयरन उससे कम करना पड़ता है, उसके लिए दवाइयां अलग चलती है। इसका बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है, और नहीं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है आगे जाके उसका।
1: शुरुआती लक्षण क्या होते हैं अगर किसी बच्चे में हमें ये पता करना हो कि वो थैलेसीमिया से ग्रसित है या नहीं है, तो शुरुआत में उसको क्या लक्षण दिखाई देंगे?
2: शुरुआत में किसी बच्चे को थकान बहुत ज्यादा हो रही है, कोई बच्चा सफ़ेद ज़्यादा हो रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं थक रहा हूँ, सफ़ेद पड़ रहा है, तो ये मेन लक्षण होते हैं किसी भी बच्चे में थैलेसीमिया के।
1: जब किसी को, जैसे आपने बताया, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये छूने से नहीं फैलता या किसी और वजह से अर्जित नहीं किया जा सकता, तो थैलेसीमिया में बेसिकली बॉडी में होता क्या है?
2: थैलेसीमिया एक खून से ग्रसित बीमारी है, जो इसमें खून बनता ही नहीं है बॉडी में। जो हमारी चेन्स होती हैं ब्लड की, मेडिकली ग्लोबिन चेन्स होती हैं, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण आगे पूरा वो चेन कम्प्लीट नहीं हो पाती और वो हीमोग्लोबिन में पूरा बन नहीं पाता, इसलिए उसको हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं, यानी कि हीम के अंदर कोई ग्लोबिन की चेन में कोई डिस्टरबेंस आ गया है।
1: जो बच्चे या जो व्यक्ति थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं, वो बेहतर तरीके से अपना जीवन कैसे सरवाइव कर सकते हैं? क्या लगातार ब्लड मिलना उनके जीवन को बचा सकता है?
2: देखिए, अगर इनिशियली ही, जैसे मैंने अभी कहा कि वो अगर माँ बाप पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की, बट कई बार कोई नहीं करता है, किसी को मेडिकली हम ये जाँच क्यों कराएं, हमारा तो हम तो सब बढ़िया है, अब चूंकि वो बच्चे में आ चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसको चिलेशन करना, और उससे ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं आज के टाइम में। जीन थेरेपीज आ चुकी हैं, बट वो हर किसी के अफोर्डेबल नहीं है। इसके आगे है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जितनी जल्दी हो जाता है बच्चों का, उतनी उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, और बच्चे बहुत इजीली इनसे रिकवर कर जाते हैं, बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ अपनी जीने लग जाते हैं।
1: क्या अज्ञानतावश हमारे देश में ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं? जैसा आपने बताया, लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं।
2: जी हाँ, अज्ञानतावश तो है ही, हमारे रीजन वाइज ये बटा हुआ है। पंजाब में, पंजाब में, सिंधियों में, इन सब में बहुत ज्यादा मतलब बढ़ता जाता है। और हमेशा हम उसमें कहते हैं कि आप कुंडली मिलना मिलवाओ, बट आप अपना HPLC की रिपोर्ट जरूर करवाओ, क्योंकि अभी तो ठीक है बट आने वाली जनरेशन वो पूरी की पूरी तकलीफ में रहती है। बच्चे को ब्लड चढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, और बच्चे को जब ये ब्लड चढ़ता है तो उसमें आयरन ओवरलोड होता है, बॉडी में हर जगह आयरन का डिपोजिशन होता है, लिवर में, लंग्स में।

0: किडनीज में, आंखों में, तो वो बच्चे के लिए भी तकलीफ है, माँ बाप जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी तकलीफ है ये। तो उसको बचाने के लिए हम पहले ही ये सारी चीज़ें कर लें, और हम अगर इसको यहाँ पे मान के चलो हम ये ट्रीटमेंट अगर कराना है तो हम आगे उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी हम सजेस्ट करते हैं कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा ले जल्द से जल्द।
1: क्या निवेदन होगा आज के दिन के अवसर पर आपका, क्योंकि आप एक हिमेटोलॉजिस्ट होने के नाते बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखते होंगे, बच्चों को देखते होंगे, और एंड लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे सभी श्रोताओं से कि प्लीज इस तरह के टेस्ट जो है, जो किसी की जीवन और मृत्यु पर निर्भर करते हैं, ये टेस्ट अपने जीवन में जरूर कराएं, एटलीस्ट शादी से पहले।
0: अगर आपको पता है कि आपकी कम्युनिटी में, आपकी रीजन वाइज ये चीजें हैं, जानलेवा नहीं है ना ये कोई संक्रमित बीमारी है, बट ये बेसिकली एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिसको हमें रोकना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे बहुत काम कर रही है। उनका मिशन भी है कि बाय 2035 दे वांट टू एंड थैलेसीमिया इन इंडिया। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रास रूट लेवल्स पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बट जनता को भी वो करना है। और इन सब बच्चों को जो ब्लड लगता है उनको भी आप हेल्दी डोनर्स की जरूरत है कि वो जाएं अपना ब्लड दें, क्योंकि ये बीमारी किसी को कहकर नहीं आती, किसी को बताकर नहीं आएगी कि मैं आपके पास आ रही हूँ। ये तो एक ऐसी बीमारी है कि आ गई है और अब हमें उसे लड़ना है। तो उसके लिए बच्चों को खून की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि मैं एज ए हेमाटोलॉजिस्ट मुझे पता है कि मेरे पेशेंट का हीमोग्लोबिन 2 है 3 है, बट हमारे आसपास वाले खून देना नहीं चाहते तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खून देने से बल्कि आप और स्वस्थ ही होंगे, इसलिए मेरे जन जन से यही निवेदन है कि आप जाएं और ब्लड डोनेशन करें। हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आपका ब्लड 3 महीने में वापस बनके नॉर्मल हो जाए। मैं खुद एक डोनर हूं और मैं फ्रीक्वेंटली अपना ब्लड डोनेट करता रहता हूं।
1: एक बहुत अच्छी टैगलाइन चलती है सर, करके देखिए अच्छा लगता है जी, हमें अपना वैल्यूएबल वक्त देने के लिए और थैलेसीमिया के विषय में अवेयरनेस को हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ बैठ के 2 शब्द कुछ बोल सकूं इन सब चीजों में। थैंक यू सो मच।

विश्व थैलेसीमिया दिवस पर अभी आप सुन रहे थे क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निपुण माधव जी को। दोस्तों, कुछ बीमारियों में प्रिकॉशन ही बचाव है, इसलिए जागरूक रहें, अपनी आने वाली जनरेशन को एक स्वस्थ जीवन देकर जाएं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, और आज की इस खूबसूरत सी सुबह में आपके साथ चल रही हूँ मैं शिखा जैन। और कार्यक्रम में वक्त हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, आज कई तरह के साहित्य का सृजन हो रहा है, पर कोई साहित्य ऐसा भी हो जो बाल मन को छू के निकले, बच्चे साहित्य को पढ़ें, कुछ सपने गढ़ें, अपनी कल्पनाशीलता को उड़ान दें। आज इसी विषय पर हमसे चर्चा कर रहे हैं बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक और सचिव डॉक्टर महेश सक्सेना जी।
1: आपने सही कहा कि आज बहुत सारे नवोदित बाल साहित्यकार आ रहे हैं, और ये सही है इस बात पर विचार करना कि क्या बाल साहित्य आज युगानुरूप लिखा जा रहा है क्या, क्योंकि अब जमाना बदला है, समय बदला है, परिवेश बदला है, और बहुत तेज़ी से बदला है ये, क्योंकि हम वैश्वीकरण के युग में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई है। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और भी तमाम गूगल हैं, AI आ गया है, क्या क्या है, तमाम चीज़ें हैं। इनके बीच में बाल साहित्य को रचना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया। बाल साहित्य वैसे देखा जाए तो एक समृद्ध स्थिति में है, कोई इसमें निराश होने की बात नहीं है, बाल साहित्य खूब अच्छी मात्रा में लिखा भी जा रहा है। मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि कुछ परंपरा से हट कर के लिखा जाना चाहिए। अमूमन हो क्या रहा है कि लोग एक पुरानी रीति या उसी मुद्दों के अनुसार, उसी तरह के कहानी के कथानकों के अनुसार, उसी तरह की कविताओं को रच रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन किया आवश्यकता है। अब परिवर्तन कहाँ कहाँ होना चाहिए वो अगर मैं आपको बताऊँ तो, कि एक तो आज बच्चों के हाथ में बाल साहित्य पहुँच नहीं रहा है। सबसे बड़ी कमी तो बाल साहित्य के इसमें ये, अगर ढेरों पुस्तकें आ रही हैं, हजारों पुस्तकें आ रही हैं, और बच्चों के हाथ में अगर नहीं आ रही तो व्हाट डज इट मीन, फिर क्या मतलब होगा, वो कोई मतलब नहीं है। नहीं भाई, जिनके लिए लिखा गया है अगर वो ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप पहले देखिए हमारे घरों में चंदा मामा, पराग, नंदन, कितनी कितनी मैगजीन आया करती थी, और बच्चे चाचा चौधरी ये बल्कि बस्ते में धर के ले जाते थे, लोग स्कूल में पढ़ते थे। अब बच्चों को वो नहीं मिल रहा, और उसके लिए बच्चे दोषी नहीं हैं, हम बड़े दोषी हैं, क्योंकि हम खुद उनको बच्चों को बाल की पत्रिकाएं ला करके नहीं देते हैं। और पहले समाचार पत्रों का जो पेपर होता है ना, वो भी एक पन्ना पूरा डट करके बाल साहित्य के ऊपर आता था, अगर साप्ताहिक आता था, अब वो भी गायब हो गया है। बाल सभाएं भी रेडियो पे, दूरदर्शन पे इस तरह के बहुत कार्यक्रम होते थे, वो भी शने शने रस्म के तौर पर हो रहे हैं, लेकिन जो पहले हुआ करते थे उसमें परिवर्तन आया है। तो दूसरी बात यह है कि बच्चों के हाथ में बाल पत्रिकाएँ पहुँचें, तो मेरा ये गारंटी है कि नए साहित्यकार जो आज लिख रहे हैं ना, उससे अच्छे बाल साहित्यकार ये पैदा होंगे, क्योंकि जब वो बाल पत्रिकाओं में कहानियों को पढ़ेंगे तो उनका भी मन होगा कि छोटी सी कहानी वो भी लिख देगा। वो जब लोरियों को पढ़ेंगे, पहेलियों को वो पढ़ेंगे, अच्छी कविताओं को वो पढ़ेंगे, अच्छे बाल गीत पढ़ेंगे, तो उनका भी मन होगा चार लाइन वो भी पढ़ देंगे, लिख देंगे। और जब शिशु गीत पढ़ेंगे तो फिर उनका मन ही, शिशु गीत तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय होते, कविताएँ बहुत अच्छी लगती हैं, उनको ज्ञान का खजाना लगती हैं, और उनको खिलौना लगती हैं, वो कविताएं भी उनको खिलौना जैसी लगती हैं, और कहानियां तो उनको इतनी रोचक लगती हैं। इसीलिए आप देखिए, हम लोग या बहुत सारे लोग, हम मेरी पीढ़ी के तो लोग रजाई में दुबक करके दादी और नानी से कहानी सुना करते थे, और कहानी सुनते सुनते सो भी जाया करते थे, और रोज़ नई कहानी की मांग करते थे, फिर दादी कुछ ना कुछ जोड़ जाड़ के, जोड़ तोड़ करके कोई ना कोई कहानी, लेकिन हर कहानी में एक सीख होती थी जो जीवन को गढ़ती थी। और आप देख लीजिए, चाहे महात्मा गांधी से लेकर के शिवाजी या जो भी महापुरुष हुए हैं, सब बाल साहित्य को पढ़ करके ही, बाल कहानियों को पढ़ करके ही, माँ से लोरियाँ सुन करके। अब हालांकि लोरी कोई समझ में नहीं आती है बच्चे के, मुझे ऐसा लगता है, अनुभव होता है कि इतने वर्षों से काम करते करते कि लोरी की संख्या बहुत कम हो गई है, सिनेमा से भी गायब है। और आप देखिए, सहगल ने पहली लोरी गाई थी ना, सो जा राजकुमारी, है ना, सूरदास तक ने लोरी लिखी है, जशोदा हरिपाल ने जो लावे, हुल रावे, ढुल रावे, जो कोई सोई कुछ गावे। तो अब ये इस तरह की

0: लोरियाँ भी बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे राइटर्स को मैंने तैयार करा है और उनने लोरी और प्रभाती की किताबें लिखी भी हैं। दूसरे बाल नाटक खेलना भी बंद है एक तरह से, यानी दूसरा ये है कि आज हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है और ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति आई है, जब इसका अनुसार पाठ्यक्रम बनेगा तो अमूमन हो क्या रहा है कि हम बाल साहित्य, ऐसा लगता है जैसे सारा बाल साहित्य शहर के बच्चों के लिए लिखा गया है, ग्रामीण अंचल अभी इससे अछूता है। यानी अब नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा छठी तक जो बाल साहित्य किताबें आएंगी पाठ्यक्रम की, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया गया है, जैसे मसलन बुंदेली है, निमाड़ी है, हमारे जो मालवी भाषा है इसका है, तो इन भाषाओं को भी और भी देशी जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्योंकि हमारा जीवन अगर असल में देखा जाए ना तो हमारे अंचल में है, हमारे लोक जीवन में है, हमारी परंपराओं में हमारा जीवन है, हमारे लोक गीतों में है, लोक नृत्यों में है, लोक रीति रिवाजों में है। हम कितने ही बड़े से बड़े आदमी बन जाएं लेकिन ये हमारी जड़ें हैं, ये तो हमको लोक अंचल की भाषा में जाना पड़ेगा। आप अंग्रेजी में पूरे भारत को समझ ही नहीं सकते, दूसरी भाषा में अगर कोई समझना चाहे बुंदेलखंड के बारे में आप समझना चाहते हैं, अब पढ़ लो अंग्रेजी किताब, क्या समझो कुछ, वहाँ कौन सा नृत्य होता है वो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, कौन से गाने होते हैं, कौन से रीति रिवाज होते हैं, कौन सी परंपराएँ होती हैं, कौन कौन से पराक्रमी लोग हुए हैं कौन, तो अब वो तो आपको किसी भाषा में ट्रांसलेशन करने से वो मज़ा नहीं आएगा जब तक आप बुंदेली में ही उसको अगर या मालवी में ही नहीं पढ़ेंगे। अंत में मैं ये कहूँगा कि जो कंप्यूटर है या जो भी कुछ है ना, वो कभी भी अच्छी चीज़ है लेकिन वो कभी भी पुस्तक का स्थान नहीं ले सकता। वो पुस्तक का स्थान कभी भी कंप्यूटर या कोई भी या गूगल मार्ट साहब जो है ना वो नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें जो फीड किया गया है वो बता देते हैं वो, है ना, कभी कभी गलत भी हो जाता है वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाल साहित्यकार बच्चों को प्रेरित करें कि वो ने जो भी लिखना है, अगर उन्हें निबंध लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो वो गूगल का सहारा नहीं ले, खुद अपनी कल्पना से और दूसरी बहुत सारी किताबों को कंसल्ट करके उसका पढ़ करके फिर सार सार जो है वो उसको अपने शब्दों में व्यक्त करें, बच्चों को स्वयं मेहनत करके उसे लिखना, इससे जो लिखने की जाए जो प्रवृत्ति खत्म हो गई ना, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ है मशीन का ज़्यादा उपयोग करने का कि बच्चों का राइटिंग स्किल खत्म, और इसके आगे जा करके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे और आगे जा करके हाथों को बच्चों की जो उंगलियां हैं ना वो चलना बंद हो जाएंगी। इसलिए बाल साहित्यकारों को इस बात के लिए भी प्रेरित करना चाहिए और माता पिताओं को भी करना चाहिए।
1: बहुत ही वैल्यूबल सब्जेक्ट पर अपने विचारों को हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि मुझे आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कैसा हो आज का बाल साहित्य, इस विषय पर आज हमसे चर्चा कर रहे थे बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक और सचिव डॉक्टर महेश सक्सेना जी। दोस्तों, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बोले भी, और अगर अच्छा बोल सकते हैं तो अच्छा लिखे भी, क्योंकि ये लेखनी आपके माध्यम से अमर रहेगी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, और आज के सफर में वक्त हो चला है हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, आकाशवाणी भोपाल द्वारा दिनांक 8 मई यानी कि आज प्रातः 8 बजे एक वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन आकाशवाणी के 90वें प्रसारण वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारी सहभागिता करेंगे। आकाशवाणी की इस खूबसूरत यात्रा को सलाम करने का ये एक बेहतर तरीका होगा हम सब के लिए। क्या उद्देश्य है इस वॉकेथॉन के, ये जानकारी हमें दे रहे हैं इस वॉकेथॉन के नोडल अधिकारी श्री मनीष गजभिये।
1: इस वॉकेथॉन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और जैसे कि आकाशवाणी ने हमेशा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का निर्माण भी किया है अपने श्रोताओं के लिए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी फिट इंडिया मूवमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं, और कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए इस वॉकेथॉन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो इसके माध्यम से हमारा एक दायित्व था समाज को यह बताना कि वाकई में स्वास्थ्य कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए।
0: आपसे जानना चाहेंगे ये वॉकेथॉन किस अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।
1: आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और 8 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 1936 से आकाशवाणी की जो विकास यात्रा है निरंतर अनवरत जारी है। हम बात करें आज़ादी के समय की, तो आज़ादी के समय भी आकाशवाणी ने जन जन तक देशभक्ति पूर्ण गीतों को पहुंचाया। फिर हम बात करें जैसे हरित क्रांति के, तो हरित क्रांति में भी आकाशवाणी की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रही। हमने विशेष विशेषज्ञों को जो कृषि से जुड़े हुए थे उनको हमारे स्टूडियोज में बुलाया और उनके माध्यम से जानकारियाँ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाई कि किस तरह से कम लागत में अधिक पैदावार की जा सकती है, और लगभग सभी लोगों के लिए कार्यक्रमों का निर्माण किया, हर वर्ग के लिए निर्माण किया, चाहे वह युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, और यहाँ तक कि हमने अपनी संस्कृति को सहेजा। जैसे हम बात करें शास्त्रीय संगीत की, और हमारे यहाँ की जो न्यूज़ है वो आज भी विश्वसनीयता के मामले में बहुत ही ऊपर है, और निश्चित तौर पर अगर हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है तो यह कहा जा सकता है कि यह बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। और आकाशवाणी ने वक्त के साथ अपने आप को बदला भी है, और टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतने ज़्यादा साउंड हो चुके हैं कि अब हम लोग जो है मोबाइल ऐप और साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, तो अब हम मोबाइल के माध्यम से भी आकाशवाणी का प्रसारण सुन सकते हैं। तो आकाशवाणी का जो भूमिका रही समाज में वह बहुत ही अमूल्य रही, उसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, और आकाशवाणी ने समाज में अमूल्य योगदान दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यही एक वजह थी कि हमने इस अवसर पर यह कार्य करने के बारे में सोचा।
0: कार्यक्रम की तिथि, समय और आगे के बारे में आप बताएं।
1: देखिए, कार्यक्रम जो आयोजित किया जाना है वह आयोजित किया जाना है 8 मई शुक्रवार के दिन, समय रहेगा प्रातः 8 बजे, और मार्ग के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मार्ग रहेगा हमारा आकाशवाणी परिसर से, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवास स्थान से होते हुए हम बोट क्लब तक जाएंगे और वहीं से हम लोग उसी रास्ते वापसी भी करेंगे।
0: इस वॉकेथॉन में किन किन लोगों की भागीदारी रहेगी?
1: देखिए, इनमें जो भागीदारी रहेगी वो मुख्य रूप से आकाशवाणी से जुड़े हुए सभी लोगों की रहेगी, चाहे वो हमारे एंकर हो, प्रेजेंटर हो या कोई और भी हो। और यह जो है एक हमें एक एग्जाम्पल भी सेट करना है कि आकाशवाणी जो है जो भी कार्य करता है वह एक टीम में कार्य करता है, तो हमें एक टीम वर्क के तौर पर काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे, और हम यहाँ तक पहुँचे भी हैं, तो शायद उसकी बहुत बड़ी वजह शायद यह भी रही है।
0: एक नोडल ऑफिसर होने के नाते इस वॉकेथॉन में आपकी क्या भूमिका रहेगी?
1: देखिए, नोडल ऑफिसर के तौर पर अगर मैं अपनी भूमिका की बात करें तो सभी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करना, और साथ ही यह जो वॉकेथॉन है उसको बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न कराना, यही मुख्य दायित्व है।
0: इस वॉकेथॉन के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखे।

0: गिरे।
1: दोस्तों, हम दिल से सलाम करते हैं आकाशवाणी की इस खूबसूरत यात्रा को और फख्र महसूस करते हैं अपने आप पर कि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं और हमारे सुनने वाले श्रोता इस यात्रा का किस्सा हैं।

और इस खूबसूरत से गीत के साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें अपने रेडियो मित्र शिखा को, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजना

0: तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: India and Vietnam offer something important.
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी

0: भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है। और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम 5 DTH का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। दोस्तों आज आकाशवाणी मध्य प्रदेश का 90वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी परिवार सभी श्रोताओं को बधाई देता है और हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि हम जो मुस्कुराते हुए अच्छे गाने आपको सुनवाते हैं या कार्यक्रम जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारी कोशिश यही होती है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो ग्राम सभा हो, नमस्कार भोपाल हो, आपकी फरमाइश हो या जितने भी कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि वो आपके मन को छू जाएं, आपका मन हमारे आकाशवाणी से ऐसा जुड़ा रहे। कहते हैं ना कि दिल के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आपके और हमारे रिश्ते बड़े मजबूत रहें, और इसीलिए कहते हैं कि दिल से जो ताल्लुक होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं, और दिल उसको दो जो चाँ दे दे, जो चाँ उसको दो जो दिल दे दे।

श्रोताओं, जब बात होती है आकाशवाणी की तो भारत में रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। खेतों में काम करते किसान हो या शहरों में भागती जिंदगी हो या गांव में शांत शामे, हर जगह एक ऐसा समय भी था जब लोग कान लगाकर ये सुनने के लिए बेताब थे, ये आकाशवाणी है, सुनने का इंतजार करते थे। आज आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो गए। ये एक संस्थान का जश्न नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक यात्रा का उत्सव है। आकाशवाणी की शुरुआत भारतीय जनमानस तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने के उद्देश्य से हुई है। समय के साथ इसने देश की आवाज बनकर हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। जब टीवी और इंटरनेट नहीं थे तब रेडियो ही लोगों की दुनिया हुआ करती थी। समाचार, गीत, कव्वालियाँ, नाटक, खेल, कमेंट्री और सरकार की घोषणाएं सब कुछ रेडियो के माध्यम से होती थी। और ये समय समय की बात है, समय बदलता रहता है और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी बदली, लेकिन रेडियो समय के साथ

आकाशवाणी ने भारतीय संगीत और कला को नई पहचान दी। कई महान गायकों, कलाकारों, शायरों की आवाज़ सबसे पहले रेडियो पर गूंजी, चाहे मोहम्मद रफ़ी हों, लता मंगेशकर हों, मन्ना डे हों, किशोर कुमार हों, मुकेश हों। ऐसे महान गायकों और कलाकारों को रेडियो ने लोगों के दिलों तक पहुंचाया। बिना का गीतमाला हो या फिल्म संगीत जैसे कार्यक्रमों ने एक पूरी पीढ़ी को संगीत से जोड़े रखा। ये आकाशवाणी की पहचान थी, या आकाशवाणी से इन कलाकारों को पहचान मिली।

क्या जादू चलाया तुमको हम पे प्यार आया ओए हमको।

आकाशवाणी ने हमेशा लोगों को जोड़ा, लोग जुड़े आवाज़ के माध्यम से, और जब देश में कठिन समय आए तो आकाशवाणी ने उसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाई। युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा हो या राष्ट्रीय संकट के दौरान लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने का सबसे सही माध्यम रहा आकाशवाणी। गांव में किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम हो या छात्रों के लिए शैक्षणिक प्रसारण और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों ने समाज को जागरूक करने में बड़ा अहम योगदान दिया है। आकाशवाणी के 90वें वर्ष स्थापना दिवस पर आकाशवाणी के जितने भी श्रोता हों उनको जोड़ने का हमारा फिर से, जो छूट गए हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास है। हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ।

आज डिजिटल के दौर में जहां सोशल मीडिया और तेज इंटरनेट की सूचना के रास्ते खुल गए हैं, वहीं आकाशवाणी अपनी सादगी और विश्वसनीयता के कारण आज भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है। दूर दराज के गांव में जहां सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, वहां रेडियो आज भी जानकारी मनोरंजन का मजबूत माध्यम है। आकाशवाणी ने देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को भी सम्मान दिया है। अलग अलग भाषाओं और बोलियों में प्रसारित कार्यक्रमों में आकाशवाणी की एकता को मजबूत किया है। सिर्फ समाचार सुनने वाला मंच नहीं, बल्कि ये देश की साझा यादों और भावनाओं की अमूल्य धरोहर है।

रेडियो आज भी जानकारी मनोरंजन का मजबूत माध्यम है। आकाशवाणी ने देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को भी सम्मान दिया है। अलग अलग भाषाओं और बोलियों में प्रसारित कार्यक्रमों में आकाशवाणी की एकता को मजबूत किया है। सिर्फ समाचार सुनने वाला मंच नहीं, बल्कि ये देश की साझा यादों और भावनाओं की अमूल्य धरोहर है।

सिर्फ प्रसारण की कहानी नहीं बल्कि भारत की धड़कनों, भावनाओं और आवाजों की कहानी है। आकाशवाणी ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृति को संभाला है और देश की आत्मा को शब्द दिए हैं। यही वजह है कि आज भी जब रेडियो पर ये आकाशवाणी है सुनाई देता है तो दिल में अपनापन महसूस होता है।

देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। वियतनाम के राष्ट्रपति तु लाम ने कल मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। डॉ. यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में भी गर्मी का असर बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडिया वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का दूसरा भाग। श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के नवे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें। तो हम यही कहेंगे कि आकाशवाणी से जो चाहत है हमारी, वो कुछ इस तरह से है कि जिसको हम भूल ना भी चाहें तो ना भूल पाएं। और आकाशवाणी को हम किस हद तक चाहते हैं वो हमारे श्रोताओं और हमारे कार्यक्रमों के बीच का एक रिश्ता है। और हम यही कहेंगे कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जैसे जितना कोई ना चाहता हो तुमको।

आकाशवाणी ने केवल मनोरंजन और समाचार तक अपनी भूमिका को सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने की भी महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वतंत्रता के बाद देश निर्माण की प्रक्रिया में रेडियो ने एक ऐसे साथी के रूप में अपनी भूमिका निभाई जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक सुधारों से जुड़ी जानकारियां आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाई। गांव में किसानों को मौसम, बीज, सिंचाई और नई खेती तकनीकों की जानकारी देने वाले कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय रहे। इसी तरह विद्यार्थियों के लिए प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में लाखों युवाओं को सीखने का अवसर भी मिला।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर। आकाशवाणी ने साहित्य और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयां दी। कवि सम्मेलनों, नाटकों, गजलों, लोकगीतों के माध्यम से देश की परंपराओं को जीवित रखा। अलग अलग राज्यों की लोक कथाओं, लोक कलाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में आकाशवाणी की भूमिका सराहनीय रही। रेडियो की आवाज़ ने न केवल कलाकारों को मंच दिया बल्कि श्रोताओं को अपनी मिट्टी और विरासत से जोड़कर रखा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। मीडियम वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

मेरा विचार है कि भारत के प्रत्येक सत्याग्रही में ये योग्यताएं होनी चाहिए। उसे ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए, क्योंकि वही तो उसका एकमात्र अवलंब है। उसे सत्य और अहिंसा को अपना धर्म मानते हुए उनमें विश्वास रखना चाहिए, और इसी कारण उसे मानव प्रकृति की अंतर्निहित अच्छाई में भी आस्था होनी चाहिए। उसे आशा रखनी चाहिए कि वो इसी अच्छाई को अपने पीड़ा भोग के जरिए सत्य तथा प्रेम की अभिव्यक्ति करके जगाने में कामयाब होगा। उसे पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने ध्येय की पूर्ति के लिए अपने जीवन और अपनी संपत्ति को न्यौछावर करने के लिए तैयार तथा इच्छुक रहना चाहिए। वो आदतन खादी धारण करने वाला तथा चरखा कातने वाला होना चाहिए। भारत के संदर्भ में ये आवश्यक है। वह मद्य त्यागी और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्त होना चाहिए, ताकि उसका विवेक सदा जागृत रहे और चित्त स्थिर रहे। वो समय समय पर निर्धारित अनुशासन के नियमों का स्वेच्छा से पालन करे। उसे जेल के नियमों का पालन करना चाहिए, सिवा उन नियमों के जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हों। ये नियमावली केवल दृष्टांतिक है। सत्याग्रही शैतान की पीठ पर सवार होकर तो स्वर्ग भी नहीं जाएगा। सत्याग्रह में कपट, मिथ्यात्व या किसी प्रकार के असत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रही सम्मानजनक शर्तों पर समझौता करने का कोई अवसर नहीं खो सकता, लेकिन समझौता वार्ता असफल हो जाने पर उसे संघर्ष के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। उसे पहले से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसकी कार्रवाई में किसी तरह की गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। लोग प्रायः ये भूल जाते हैं कि सत्याग्रही का उद्देश्य अन्यायी को लज्जित करना कभी नहीं हो सकता। उसकी अभ्यर्थना अन्यायी के भय से नहीं, सदैव उसके हृदय से होती है और होनी चाहिए। सत्याग्रही का उद्देश्य अन्यायी पर जोर जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना है। उसे अपने समस्त व्यवहार में बनावटीपन से बचना चाहिए। वो सहज रूप से तथा अपने आंतरिक दृढ़ विश्वास के बल पर काम करता है। सत्याग्रह मूलतः सत्यनिष्ठ व्यक्ति का हथियार है। सत्याग्रही अहिंसा से प्रतिबद्ध होता है, और जब तक लोग मनसा वाचा कर्मणा इसका पालन न करें, मैं सत्याग्रह नहीं कर सकता। मेरी सदा ये धारणा रही है कि अपनी गलतियों को उत्तल लेंस से और दूसरों की गलतियों को अवतल लेंस से देखने पर ही दोनों की न्यायोचित तुलना की जा सकती है। मेरा विश्वास है कि जो सत्याग्रही बनना चाहता है, उसके लिए ध्यानपूर्वक और ईमानदारी के साथ इस नियम का पालन करना आवश्यक है। सत्याग्रही पशुबल की यंत्रणा से बचाव के लिए भगवान पर भरोसा रखता है। कोई पक्का सत्याग्रही अपने विरोधी की ओर से आने वाले अपेक्षित या अनपेक्षित खतरों से घबराता नहीं है। हाँ, हर सेना की तरह उसे भी अपने भीतर के खतरे से भय खाना चाहिए। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग, और अब प्रस्तुत है भजन।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह, आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आरजू का एक गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।
1: अजी हमसे बच कर कहां जाइएगा, जहां जा

अब हम आपको सुनवाते हैं एक और गीत जिसको हमने लिया है फिल्म जानवर से। आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है और इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शराबी से। आवाजें हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म क्रांति से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नजराना प्यार का। इस फिल्म से आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। निदा फाजली ने इस गाने को लिखा है और हेमंत भोसले का संगीत है।

0: अभी आपने सुना फिल्म नजराना प्यार का, इस फिल्म का गीत। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसको हमने लिया है फिल्म वचन से। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।
1: संभल कर चलो जाना वरना गिर जाओगी, जवान मस्त है डगर।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चाई का एक गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, शंकर जय किशन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत। यह है फिल्म संगीत की आखिरी प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में हुआ हमारा अगला कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों एक साथ कई बदलाव और गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम के बदलते तेवर, प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक अभियानों की रफ्तार, महिला सशक्तिकरण की पहल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम सभी मिलकर जिले की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। मई माह की शुरुआत इस बार सामान्य वर्षों की तुलना में अलग रही। जहां आमतौर पर इस समय तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने किसानों के चिंताएं बढ़ा दी हैं।

उधर उपार्जन केन्द्रों और समितियों में रखे अनाज पर भी इस मौसम का असर देखने को मिला है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और समितियों को निर्देश जारी किए कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। हजारों किसान स्लॉट बुकिंग के माध्यम से अपनी उपज बेच रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सेटेलाइट सत्यापन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उपार्जन केन्द्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों जैसी अन्य फसलों के लिए भी उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में सेवा और मानवता के संदेश को मजबूत करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा रेडक्रॉस सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 मई से 8 मई तक चल रहे सप्ताह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आपदा के समय सजग रहने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी गई। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को बताया कि कठिन समय में संयम और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रेडक्रॉस के इस अभियान के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। जिले में स्वच्छता को लेकर भी एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शहर में रंगोली अभियान आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विधायक रीति पाठक ने रात्रिकालीन सफाई अभियान में स्वयं श्रमदान कर एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासनिक स्तर पर जनगणना अभियान को लेकर भी विशेष सक्रियता दिखाई दे रही है। कलेक्टर ने स्वयं मैदान में उतरकर जनगणना कार्य में भाग लिया। उन्होंने एक परिवार के घर पहुंचकर न केवल प्रक्रिया का अवलोकन किया बल्कि लोगों को सही जानकारी देने का महत्व भी समझाया। जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं का आधार होती है। इसी कारण प्रशासन इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। चुरहट में आयोजित अवनी कार्यक्रम ने महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में क्रिएटिव गतिविधियां भी आयोजित की गई, जहां छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से अपने सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को प्रस्तुत किया। ये पहल न केवल उनकी प्रतिभा को मंच देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो सीधी जिले में विकास, जागरूकता और जन भागीदारी का संतुलित स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और कृषि, इन सभी क्षेत्रों में हो रहे प्रयास ये संकेत देते हैं कि सीधी जिला निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र का था और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम महिला संसार।

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी सभी सखियों का उनके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम महिला संसार में। सखियों, आज है शुक्रवार, यानी आपकी पसंद, आपकी आवाज़ और आपके मन पसंद गीतों का दिन। तो उठाइए फ़ोन और डायल कीजिए नंबर 2660902 और सुने अपनी पसंद के फिल्मी गीत। सखियों, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस भी है, जो हमें सेवा, समर्पण और इंसानियत का संदेश देता है, और यही भावना हमारी हर सखी के दिल में भी बसती है। तो आइए अब इसी खूबसूरत जुड़ाव के साथ सीधे जुड़ते हैं अपनी पहली श्रोता सखी से, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुकी हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका नाम जानना चाहेंगे?
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार। आपका नाम जानना चाहेंगे?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ।
0: जी नंदिनी जी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी
0: कहाँ से बात कर रही हैं नंदिनी जी?
1: मैं सागर से।
0: जी बहुत स्वागत करते हैं आपका नंदिनी जी। सबसे पहले आप
1: जी, मैम आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है।
0: जी अब ठीक है।
1: जी
0: जी, हम आपकी पसंद जानना चाहेंगे, कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं? एक बार फिर बताएं कौन सी फिल्म का गीत?
1: मूवी का नाम है कोई जाने ना।
0: कोई जाने ना का कौन सा गीत सुनना चाह रही हैं?
1: जी
0: कौन सा गीत सुनना चाह रही हैं? कोई जाने ना
1: सॉन्ग है रब मनिया।
0: रब मनिया
1: जी, और डेडिकेट रानू दीदी को और आपको रहेगा, और जी जो सर हैं उनके लिए भी रहेगा।
0: जी उनकी तरफ से और हमारी तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और आप सुनना चाह रही हैं कोई जाने ना फिल्म का रब माने ना गीत। जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है, तो सेवा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
1: जी आपकी आवाज़ ना मेरे पास थोड़ी भी कम आ रही है।
0: जी जी चलिए मैं आपसे फिर पूछती हूँ कि सेवा का क्या अर्थ समझती हैं आप? सेवा क्या होता है, क्या महत्व है सेवा का?
1: सेवा
0: जी चलिए देखिए, सेवा का मतलब किसी के लिए थोड़ी सी की गई थोड़ी सी मदद, अगर हम थोड़ा भी किसी के लिए हाथ बढ़ाते हैं मदद का,
1: ऐसा मतलब है कि ख्याल रखना है ना?
0: जी जी, किसी भी तरह की अगर हम थोड़ा सा भी मदद करते हैं तो बहुत बड़ा असर छोड़ सकती है। चलिए सुने आप अपनी फरमाइश का ये गीत।

0: सखियाँ सुन रही हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत, बस एक फ़ोन नंबर डायल करके, फ़ोन नंबर है 2660902। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर वो अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं फ़ोन करें गीत सुनने कार्यक्रम में, तो 10:30 बजे के बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो अपना फ़ोन करके अपने गीत पसंद बता सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की ओर जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: नाम मैं जानना चाहेंगे? तो बात कर रही हूँ देवास से।
0: जी रानू जी, आप अपनी पसंद बता दें कौन
1: सा। आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा कम आ रही है।
0: हेलो
1: हाँ अब आइए
0: जी,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: जी रानू जी, कौन सा गीत सुनना चाह रही हैं, किस फिल्म का?
1: एक गाना सुनना है मुझे, मूवी का नाम है होगी प्यार की जीत।
0: होगी
1: गाने के बोले तालों में नैनीताल।
0: होगी प्यार की जीत फिल्म का गीत है, तालों में है नैनीताल ये बोले
1: जी।
0: जी कैसी हैं रानू जी?
1: हाँ मैं ठीक हूँ, बट ना आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा कम आ रही है।
0: हेलो अब आई आपको हमारी आवाज़?
1: हाँ ठीक है, एडजस्ट कर लूँगी।
0: चलिए अपनी पसंद का गीत सुनना है, जब हमें अपनी पसंद पूरी करनी होती है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना भी पड़ता है ना।
1: एडजस्ट कर रही हूँ इसलिए तो आप, मैंने सोचा चलो बात ही कर लेती
0: हूँ। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, आकाशवाणी पर बात ही कर लेती हूँ वाली चीज़ नहीं है। आकाशवाणी ऐसी जगह है जहाँ हम बात करते हैं तो एक प्राउड फीलिंग वाली बात होती है।
1: हम भोपाल ही सुनते हैं और कोई सा भी स्टेशन नहीं सुनते हो रही है, ही कॉल करते हैं भोपाल।
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए आपसे जानना चाह रहे थे कि जैसा कि आज जो दिन है विश्व रेडक्रॉस दिवस है, तो आपके लिए जिंदगी में ऐसा लगता है कि आज के समय में भी सेवा के लिए समय निकाला जा सकता है जबकि लोगों की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है?
1: जी मैम, बट हम ये तो नहीं कहते कि हमको पर डे, बट कभी कभी तो समय निकाल लेना चाहिए और सेवा हमें मन से करनी चाहिए। अगर हम देखें एक तो वो जो दिखाते हैं तो वो नहीं करना चाहिए फॉर्मेलिटी के लिए, अगर हमारा मन है वो सच में हम दिल से करना चाहते हैं तो बस हुआ मतलब वैसे ही कीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रानू जी आपने। चलिए सुने अपनी पसंद,
1: और ये सॉन्ग डेडिकेट आपको, नंदिनी को और जावेद सर को रहेगा।
0: धन्यवाद, सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद।

0: सखियां सुन रही हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत बस एक फ़ोन नंबर डायल करके, फ़ोन नंबर है 2660902। और अब एक और सखी हमारे साथ हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। नाम जानना चाहेंगे? हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी। नाम जानना चाहेंगे आपका?
1: सपना बोल रही हूँ, बुला से।
0: जी सपना जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, मुझे गाना सुनना है।
0: जी बताएं अपनी पसंद हमें।
1: मुझे का नाम है सिद्धल, गाने के बोल हैं आपके आ जाने से।
0: आपके आ जाने से,
1: इसलिए हम आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही
0: है। जी एक बार आप अपनी पसंद हमें फिर बता दें।
1: आपके आ जाने से।
0: आपके आ जाने से। जी जी
1: मैम
0: जी। तो सपना जी आपसे यही जानना चाहेंगे, आज के दिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेवा समर्पण के बारे में, सेवा समर्पण के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को या परिवार के दूसरे लोगों को मदद करना कैसे सिखाती हैं दूसरों की?
1: मैम करती हूँ सेवा, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है।
0: जी जी।
1: और मन से जी,
0: बिल्कुल। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो हम जो करते हैं या हमें जो कुछ करते हुए बच्चा देखते हैं वही जी, करते हैं, है ना? तो चलिए ये सुनिए आप अपनी पसंद का गीत।
1: शुक्रिया।

0: सखियाँ सुन रही हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत, और सखियों आपकी आवाज़ और आपके विचार हमारे कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खूबसूरती देते हैं। चलिए तो इस खूबसूरत सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: गाना सुनना है
0: जी, गाना सुनना चाहते हैं आपका
1: नाम। फिल्म का
0: पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कौन बोल रहे हैं?
1: आपकी आवाज कम आ रही।
0: देखिए, आपके पीछे से कोई बोल रहा है, उसकी आवाज़ हम तक पहुंच पा रही है, शायद इसलिए आप हमारी आवाज़ को ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
1: रश्मि तिवारी।
0: रश्मि जी, अब बताएं कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाह रही हैं?
1: साजन फिल्म का।
0: साजन फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाह रही हैं?
1: तुमसे मिलने की तमन्ना है।
0: तुमसे मिलने की तमन्ना है। रश्मि जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ, ठीक।
0: अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें ठीक रहना चाहिए। घर परिवार में कौन कौन है आपके?
1: दो बच्चे हैं, एक बेटी है, छोटा सा परिवार है।
0: बहुत अच्छी बात है, छोटा परिवार है, और हम उम्मीद करते हैं आप अपने बच्चों को और परिवारजनों को लोगों की सेवा मदद करने का भाव जरूर सिखाती होंगी। चलिए सुने अपनी पसंद का ये गीत।
1: हाँ, करने चाहिए।

तो सखियों, इस प्यारी सी मुलाकात और आपकी पसंद के मधुर गीतों का सफ़र आज यहीं तक। आकाशवाणी की ये ध्वनि तरंगे यूं ही आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सकारात्मक का संदेश पहुंचाती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज मुझे यानी अर्चना सक्सेना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम महिला संसार। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रागमाला के अंतर्गत पंडित भीमसेन जोशी का गाया ख्याल गायन। राग है गुजरी तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में भी आप सुन रहे थे पंडित भीम सेन जोशी का गाया ख्याल गायन, राग था गुजरी तोड़ी। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विकास साझेदारी, वैश्विक कार्यबल, आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉ एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना के 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वैकोथॉन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई, कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में सम्पन्न हुई। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेब डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
4: श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। कीजिए हमसे बात और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। हेलो
5: जी, आलिनी दीदी सादर नमस्कार।
4: जी नमस्ते, आपका शुभ नाम।
5: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा चिकी मथुरा उत्तर प्रदेश की वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
4: हम बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं आप?

0: मथुरा उत्तर प्रदेश।
1: मथुरा उत्तर प्रदेश। हाँ शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, मथुरा में तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही होगी।
0: जी जी जी हृदय से धन्यवाद करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा में बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है, तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड को
1: अरे
0: जाता है।
1: हाँ,
0: मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना है और लू की चपेट में बिल्कुल नहीं है।
1: क्या बात है। मतलब मथुरा का हमने सुना था गर्मी बहुत तेज पड़ती है इन दिनों में।
0: जी दीदी, पिछले 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी और रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी
1: हाँ।
0: जिसके कारण कि तापमान 42 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है।
1: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई वहां विजिट करना चाहे तो अभी आराम से आ सकता है।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, भ्रमण करने लायक है और जो देवालय हैं यहाँ पे, शिवालय हैं अनेकों, लीला स्थली क्रीड़ा स्थली भगवान की, वो
1: जी
0: सब दर्शन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी।
1: बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी और हमारे बाकी श्रोताओं के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। अच्छा अब ये बताइए, आज का प्रोग्राम है फोन करे गीत सुने, तो आज आपने कौन से गीत सुनने की फरमाइश है आपकी?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शोर,
1: शोर।
0: अनिल कपूर साहब की आवाज में।
1: हाँ,
0: जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, ये सारा सबसे वाला गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रेरणादायक है।
1: अच्छा, जीवन चलने का नाम।
0: जी
1: देखते हैं हम ये गीत, हमारे पास वैसे तो है 99.9% है ये गीत, फिर भी एक बार
0: बिल्कुल
1: मैं
0: जी
1: चेक
0: जी
1: कर
0: जी
1: लेती
0: याद
1: हूँ।
0: है आपकी बात जी,
1: क्यों नहीं दिख रहा ये भाई?
0: 101% श्योर।
1: हाँ हाँ होगा वो तो। और सुनाइए शारदा जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
0: दीदी मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक
1: अरे
0: नाती
1: वाह,
0: है, एक नतनी है
1: अच्छा अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: हम सब एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं
1: हाँ,
0: आनंद पूर्वक और आप लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं रेडियो
1: अरे
0: सुनना मेरा
1: वाह,
0: शौक
1: मतलब
0: है परिवार
1: आपके
0: में।
1: घर के सभी लोग है ना गीत संगीत से
0: जी
1: जुड़े हैं और हमारे आकाशवाणी रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी निसंदेह।
1: ठीक है शारदा जी, आपकी पसंद का गीत मेरी नज़रों के सामने है, तो कल आप अपनी पसंद का गीत इस प्रोग्राम में सुन सकेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो चुका है, तो आप आज जो रिकॉर्ड करेंगे वो कल सुनेंगे, तो कल
0: बिल्कुल,
1: 11 बजे अपना।
0: मैं करीब 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चालू हुआ है
1: हाँ हाँ
0: तब से मैं जुड़ गया हूँ। पहले मैं प्रयास करता था लेकिन मेरा फोन कभी लगता नहीं था लाइव प्रोग्राम में, और जब से रिकॉर्डेड हो गया है तो मैं
1: अच्छा
0: 8 दिन 10 दिन के अंदर से लगाता हूँ और
1: हाँ
0: मेरा
1: जी,
0: फोन आराम से लग जाता है।
1: चलिए धन्यवाद शारदा जी, और बस एक विनती करेंगे कि एक हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
0: हाँ दीदी, मैं 10 दिन में करता हूँ, 9 दिन में 10 दिन करता हूँ,
1: चलिए
0: इससे
1: ठीक
0: पहले
1: है,
0: मैं नहीं करता हूँ। मेरा
1: बिल्कुल
0: फोन
1: बिल्कुल।
0: 28 तारीख को लगा था और 28 के बाद आज लगा रहा हूँ।
1: ओके, धन्यवाद शारदा जी।
0: बहुत बहुत हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं का।

0: हेलो। हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: अच्छा कन्हैयालाल जी।
1: हाँ जी,
0: अभी भी जो हमारे पहले श्रोता थे वो भी प्रजापति और आप भी प्रजापति।
1: सही है।
0: बड़ा संयोग है ये तो। हाँ
1: सही बात है मैडम।
0: जी, बस वो कन्हैयालाल जी मथुरा से बोल रहे थे और ये वो कन्हैयालाल जी नहीं थे, क्षमा कीजिए, वो शारदा प्रसाद जी थे प्रजापति
1: अच्छा, हाँ
0: और मथुरा
1: चलो।
0: से, और ये
1: हाँ
0: मथुरा से कन्हैयालाल जी आ गए हैं उज्जैन से, क्या बात
1: हाँ
0: है।
1: हाँ बहुत बढ़िया बात है।
0: बहुत ही
1: मथुरा
0: बढ़िया संयोग
1: से उज्जैन आ गए, गोकुल
0: वही।
1: गोकुल
0: बिल्कुल
1: बनने गए हैं ना, पढ़ने के लिए आ गए हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: आगे
0: हाँ तो
1: पढ़ने।
0: चलिए कन्हैयालाल जी, अब बताइए, पहले तो आप अपने हाल बताइए कि हाल कैसे हैं आपके।
1: बस हाल क्या है, गर्मी बहुत भयंकर गिर रही है इधर तो, अब आराम कर रहे हैं या खाना खा करके।
0: सही बात है, गर्मी तो है। दो
1: अच्छा
0: तीन दिन से
1: वर्षा हो गया
0: थोड़ी
1: कुछ।
0: सी राहत मिली है ना, थोड़ी बूंदाबांदी की
1: हाँ
0: वजह
1: भो,
0: से।
1: हाँ भोजन वोजन करके आए और हृदय लाला आराम
0: हाँ
1: कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी गिर रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कन्हैयालाल जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: वो फिल्म जीने की राह सुना दीजिए। हाँ,
0: जीने की राह।
1: आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा,
0: जीने की
1: बड़ी
0: राह तो मिल गया है।
1: दिलदानी है मेरी महबूबा। ये वाला
0: लेकिन इसमें देखिए ना, जीने की राह तो मूवी मेरे सामने है। बिल्कुल ठीक है, मिल गया
1: हाँ
0: आपकी पसंद का गीत भी मिल गया,
1: हाँ
0: है ना। चलिए तो कल हमारे प्रोग्राम में आप ये गीत सुन सकेंगे।
1: और आपके इधर किससे क्या गर्मी है अभी इंदौर तरफ
0: हमारे अभी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है,
1: भोपाल?
0: लेकिन अभी थोड़ी बारिश हो गई थी तो 2 दिन से कुछ राहत कह सकते
1: रात
0: हैं,
1: मिली? अच्छा, रात महसूस
0: है
1: हुई
0: ना
1: है। हाँ
0: जी। चलिए धन्यवाद कन्हैयालाल जी कॉल करने के लिए, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ऐसी गुजारिश है
1: ओके ओके, धन्यवाद।
0: जी। नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: मैडम
0: जी कहाँ से? नागदा से।
1: जी, हाँ, नागदा तहसील लगता है और ग्राम बछोड़ा है हमारा, उज्जैन जिले में लगता
0: जी
1: है।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम सिंह जी। और कॉल
1: जी थैंक
0: कितने
1: यू सो
0: दिनों बाद कर
1: मच।
0: रहे हैं आप?
1: जी समझ में नहीं आया
0: मैंने कहा फोन कितने दिन बाद लगा है आपका रेडियो में।
1: जी, 10 दिन बाद लगा है आज कॉल मेरा।
0: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से। जी
0: अच्छा, क्या
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं आप ये तो बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, भजन गायक हैं
1: जी
0: तो उसे
1: जी
0: भजन
1: हाँ,
0: गाते
1: हमारे
0: हैं।
1: 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है
0: हाँ
1: जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं और
0: हाँ
1: 2 लोग ढोलक और तबला बजाते हैं। और दीदी
0: हाँ
1: आपको बताओ, मतलब हफ्ते 8 दिन 10 दिन में हमारा प्रोग्राम मतलब होता ही हो रहता है हमारे आसपास के एरिया में।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: हाँ, और उसके साथ में मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ 2005 से। पहले फोन इन प्रोग्राम कम आते थे, फोन इन के अलावा पत्रों द्वारा भी मैंने कई बार फरमाइश भेजी थी आकाशवाणी
0: हाँ
1: भोपाल
0: हाँ
1: पर।
0: जी।
1: और एक आकाशवाणी भोपाल से मतलब रविवार की सुबह प्रोग्राम आता था, आपके फोन मतलब पत्रों पर आधारित होता था जी। उसमें मतलब चिट्ठियां डालते थे, मतलब उसमें है ना पूरे हफ्ते की जानकारी के बारे में बताते थे सभी
0: अच्छा, मतलब
1: लोग।
0: काफी टाइम हो गया आपको रेडियो से जुड़े हुए।
1: जी हाँ, और उसमें है ना एक दिन ऐसा भी वो विशेष होता था
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: श्रोताओं को मतलब आकाशवाणी के वहां से फोन आता था, वो श्रोता से जानकारी लेते थे वो आकाशवाणी के बारे में, कौन सा प्रोग्राम कैसा लगता है, किस प्रोग्राम में उतार चढ़ाव की जरूरत होती है, मतलब ऐसे मतलब है
0: हाँ
1: ना
0: जी।
1: आकाशवाणी स्टूडियो से कॉल लगाते थे और मुझे भी कई बार ऐसे कॉल आते थे वहां
0: अरे
1: से।
0: वाह, क्या बात है। तो चलिए,
1: जी,
0: मतलब
1: और
0: अब
1: एक बात और
0: अपना
1: है, जैसे युववाणी प्रोग्राम आता था ना, युववाणी
0: अभी भी
1: आकाशवाणी
0: आता
1: भोपाल
0: है।
1: के।
0: हाँ हाँ
1: जी हाँ, उसमें एक फोन इन प्रोग्राम आता था हेलो जीनियस करके,
0: हाँ हाँ
1: उसमें 5 सवाल पूछे जाते थे और जो जीनियस होते थे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता था,
0: हाँ हाँ
1: तो मैं भी एक बार वहां पे जीनियस बना था।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो प्रेम सिंह
1: जी
0: जी, अपना ये लगाव आकाशवाणी से बनाए रखिएगा और कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आकाशवाणी की जितने भी मतलब मैं कार्यक्रम सुनता हूँ ना, उनको बड़ा ध्यान से सुनता हूँ और सभी को मतलब ऐसा
0: हाँ
1: रखता
0: हाँ
1: हूँ लिखकर।
0: चलिए, धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: थोड़ी रफ्तार पकड़ रही है।
1: और घर में सब
0: और
1: कैसे हैं?
0: आप
1: हाँ,
0: ठीक
1: हम बढ़िया हैं। तो बताइए, कौन से गीत सुनेंगे?
0: आज सुनाना सड़क फिल्म का
1: सड़क फिल्म का
0: जी,
1: कौन सा वाला गीत?
0: ओ जब जब प्यार में पहरा हुआ,
1: अरे वाह, क्या बात है! बहुत प्यारा गीत है ये।
0: ये का हम बिल्कुल सदाबहार गीत सुनते हैं मैम।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है। और कुछ गीत तो ऐसे हैं जो कितना भी सुन लो लेकिन उनसे आप ऊबते नहीं हो,
0: जी
1: है
0: मैम
1: ना?
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, ये गीत हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे। तो कल 11 बजे अपने प्रोग्राम में ये गीत अपनी पसंद का ज़रूर सुनिएगा।
0: जी मैम
1: जी,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते
0: हाँ जी नमस्ते।
1: मैम। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते
0: जी शुभ नाम आपका।
1: पहुँचे पंडित शिवनारायण तिवारी, राधा
0: जी शिव
1: जी।
0: नारायण जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप?
1: जी, बहुत दिन बाद फोन भी लगा रहे। हाँ,
0: अच्छा। क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है हाल चाल। गर्मी

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है
1: नमस्ते
0: आपका।
1: मैम।
0: नमस्ते। अच्छा,
1: मैम शिवानी, मेरा बात करी नीमच से। जी
0: शिवानी।
1: मैम,
0: पूरा नाम क्या है आपका?
1: मेहरा,
0: शिवानी मेहरा।
1: शिवानी मेहरा,
0: कहाँ से? नीमच
1: नीमच
0: से।
1: से। जी
0: कैसी हैं शिवानी जी?
1: मैम, आप अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और अभी गर्मी के मौसम में क्या स्पेशल प्लान किया है आपने?
1: मैम अभी तो कहीं हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि इतनी गर्मी है।
0: कहीं घूमने जाने का, हिल स्टेशन पे जाने का प्लान नहीं किया?
1: नहीं मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है नीमच में, अभी कहीं
0: हाँ,
1: निकलने के भी नहीं है अभी तो,
0: ये बात तो सही है। फैमिली में
1: क्योंकि
0: कौन
1: वहां
0: कौन है
1: बिल्कुल।
0: शिवानी जी आपके?
1: हाँ,
0: कौन कौन है फैमिली में?
1: फैमिली में मैं, मम्मी,
0: हाँ।
1: पापा, मेरे से दो छोटी सिस्टर और एक भाई है।
0: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो घर पर रहती हूँ, खाना वाना बना रही होती है, और फिर मैंने की फोन इन प्रोग्राम आ रहा है, मैंने ट्राई करती हूँ।
0: चलो ठीक है। तो शिवानी जी, कौन सी पसंद, मतलब कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी आप कल?
1: मैम सागर मूवी का
0: अरे
1: चेहरा है
0: वाह।
1: चांद खिला है।
0: बहुत प्यारा गीत है ये तो।
1: जी मैम,
0: तो हम आपको ये गीत ज़रूर सुनवाएंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे आपका, और आप
1: जी
0: कल
1: मैम,
0: के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत ज़रूर सुनिएगा शिवानी जी। कॉल
1: थैंक
0: करने
1: यू
0: के लिए
1: मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, मैं देवास मध्य प्रदेश से राजू अग्रवाल बोल रहे हो दीदी।
0: हाँ राजीव जी, आपसे एक बार और बात हुई थी हमारी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: कैसे हैं आप?
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: हाँ, धन्यवाद।
0: कैसे हैं राजीव जी?
1: बढ़िया है दीदी। आप जैसे फरमाइश कार्यक्रम करते हो, आपकी फरमाइश जो आता है तो
0: हाँ जी।
1: उसमें क्या है कि जैसे लेटर ज्यादा लिया करो आप,
0: चलिए।
1: जैसे ऐसा बोलते हो सोता साथी, वो तो सोते ही पसंद, बस पसंद आप सबकी में सब आ जाता है। आप जो बोलते हो ना, तो थोड़ा सा लेटर उसमें बढ़ाओ, और हमारा देवास के लेटर तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं।
0: वो इत्तेफाक है, इतना बड़ा बंडल होता है उसमें से हम कुछ लेटर सिलेक्ट करते हैं तो जो हाथ में आते जाते हैं ऐसा रहता है, पर कोशिश करेंगे आपका पत्र भी हम शामिल करें।
1: मध्य प्रदेश एमपी के लेटर कम शामिल हो रहे, और एक ही एक लेटर रोज शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने जो कल लिया वही आज वापस वो का वही शामिल हो गया। तो हमारा ये आपसे अनुरोध है कि जैसे सबके लेटर शामिल होने चाहिए।

0: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पत्र पढ़ें। और
1: जी,
0: चलिए, अभी तो आज के
1: और
0: लिए
1: जैसे
0: बताइए कि कौन सा
1: कि
0: गीत सुनना चाहते हैं।
1: आज तो दीदी जैसे ये अजीज नाजा जो कव्वाल है मशहूर, 7 मई का उनकी मतलब डेट
0: देखिए,
1: पता है जी?
0: आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ पर है ये फिल्मी गीत। फिल्मी गीत आपको सिलेक्ट करने हैं जो अपने
1: हाँ,
0: फिल्मों के।
1: फिल्मी गीत पुतली बाई पिक्चर का सुनवा दीजिए, उन्हीं का गाया हुआ गीत है कोई सा,
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: पुतली बाई का
0: हाँ हाँ
1: वाला सुनवा दीजिए, नहीं तो फिर ये
0: पुतली
1: लेडीज
0: बाई का
1: सिंगर
0: कौन सा
1: उसका
0: वाला?
1: कोई सा भी, जैसे इन्हीं का गाया हुआ गीत है उसमें, झूम बराबर झूम शराबी ये भी है और दूसरा भी है गीत,
0: नहीं, इसमें झूम बराबर
1: और
0: झूम तो
1: या
0: नहीं।
1: फिर लेडीज टेलर पिक्चर का दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला, पुतली
0: देखते हैं ये है कि नहीं है।
1: बाई का देख लो पहले, अजीज नाजा साहब का गाया
0: नहीं, है इसमें पुतली बाई का तो नहीं
1: जी
0: है। पुतली बाई का जो
1: जी
0: गीत आप बता रहे हैं
1: हाँ,
0: वो नहीं है इसमें।
1: अजीज नाजा जी का नहीं है गीत,
0: नहीं,
1: तो फिर ये यही सुना दो, लेडीज टेलर पिक्चर का दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला,
0: लेडीज टेलर।
1: रफी साहब और लता जी,
0: अच्छा,
1: मजरू साहब और लक्ष्मीकांत
0: हाँ
1: प्यारेलाल
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे पास लेडीज टेलर का गीत, दो चाहने वालों की।
1: हाँ, मुलाकात है वल्ला,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लोकेन वर्मा भी इसे की फरमाइश इसी की फरमाइश कर रहे हैं
0: चलिए ठीक है। तो ये
1: उसके
0: गीत आप
1: अंदर।
0: बिल्कुल सुनिएगा कल के प्रोग्राम में, और कॉल करने
1: धन्यवाद
0: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: दीदी, नमस्ते। सरनपाल
1: क्या शुभ नाम है आपका?
0: से गुर्जर, ग्राम बाबूपुरा, तहसील ख्वाज, जिला जालौन से बोल रहा हूँ दीदी।
1: आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, एक बार रिपीट कीजिए।

0: सुरान पाल से गुर्जर ग्राम बाबूपुरा तहसील को जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
1: जालौन से गुर्जर है ना?
0: हाँ
1: जालौन से गुर्जर जी बोल रहे हैं
0: जी, सुरान पाल से गुर्जर ग्राम
1: सुरेंद्र
0: बाबूपुरा।
1: पाल जी गुर्जर। ठीक है
0: जी
1: ठीक है। तो सुरेंद्र पाल जी क्या हाल है आपके?
0: अच्छा है, बढ़िया
1: गर्मी
0: चल
1: कैसी
0: रहा है
1: निकल रही
0: आपका।
1: है
0: हाँ
1: जालौन में? गर्मी कैसी पड़ रही है?
0: अभी तो बारिश हो जाती है तो गर्मी कम है फिलहाल में, हल्की
1: चलिए।
0: फुल्की बूंद बांद हो जाती है
1: हाँ हाँ
0: तो अब गर्मी से राहत है इस समय।
1: चलिए। और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: उपकार का सुना दीजिए, मेरे देश
1: अच्छा।
0: की धरती सोना उगले।
1: ठीक है। उपकार का मेरे देश की धरती, बिल्कुल बहुत ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने कॉल कितने दिनों में किया है? और
0: हो गए 2 माह 3 के लगभग
1: अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि
0: एक
1: हमारे यहाँ
0: बार।
1: एक ये नियम है कि 1 हफ्ते के पहले किसी भी कॉलर का कॉल रिपीट नहीं लेते हैं।
0: नहीं,
1: ठीक
0: दो
1: है
0: तीन माह हो गए करीब करीब।
1: चलिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए सुरेंद्र जी। और आप अपना पसंद का गीत कल सुन सकते हैं, अपनी पसंद का गीत। ठीक
0: एक
1: है
0: बात, जिज्ञासा है हमारी दीदी,
1: हैं?
0: एक जिज्ञासा है जो आप 11 बजे से फोन करते, वो उन लोगों रिकॉर्डिंग क्या
1: हाँ,
0: बजे से होती
1: वो
0: है?
1: अब रिकॉर्डिंग होती है 10:30 बजे से, एक दिन पहले। आज जो अपन
0: अच्छा
1: बात कर रहे हैं ना, ये कल
0: हाँ जी,
1: 11 बजे प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे।
0: यही
1: ठीक
0: जिज्ञासा थी। चले
1: हाँ जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते दीदी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: हाँ विपिन जी, नमस्ते।
1: क्या बात है, मैं कॉल मतलब घंटी गई नहीं, और आपने उठा लिया, इसलिए
0: नहीं,
1: ध्यान ही
0: घंटी
1: नहीं
0: तो
1: गया।
0: यहाँ पर आई है।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विकास, साझेदारी, वैश्विक कार्यबल, आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक नीति में राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वॉकेथॉन का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें कि सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है, जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काम चोर का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन ने संगीत से सजाया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नीला आकाश से, आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। इस गाने को पसंद किया है, लिखने वाले हैं गौतम नगर ज़िला नादेड़ से प्रभाकर चौधले और आरती चौधले, और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सारणी ज़िला बैतूल से, लिखने वाले हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाली यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाग और पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोरवाई ज़िला विदिशा से जावेद अली, साबिर अली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाने को लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। बनिया भारत धमतरी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और संपर्क माखीजा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है। घंटाघर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया का परिवार। तो सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रिंस का एक गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

अभी आपने जो दो गाने सुने उन दोनों की मिलीजुली फरमाइश इस तरह है। नेपाल पहले सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, ये लिखा है इन्होंने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, ताज मोहम्मद, और इन्होंने ये लिखा है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए जो आप अगला वाला सुनने वाले हैं उसकी फरमाइश है सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपद साहू, सरोजनी कुंती साहू, छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से इन्होंने ये पत्र भेजा है। और अगला गाना है माँ और ममता फिल्म का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, सुनते हैं ये गीत। ये अंतिम प्रस्तुति आपकी फरमाइश की।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 5 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन और सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं वो 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर से 2660902 और 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय फ़ोन नंबर एक बार दोबारा सुन लीजिए, 10 मई 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर है 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

0: Beer.
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की नवी कड़ी।
4: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की नौवीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बोध का नाट्य रूपांतरण।
1: हाँ तो बच्चों, दो दुनी
2: चार,
1: पांच सत्ते
2: पैंतीस,
1: ग्यारह निम्मे
2: निन्यानवे।
3: कहां से जंगल में आ फंसा? यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होता तो आज हाथ में चार पैसे होते, आराम से जीवन कटता। हमसे तो मजदूर ही भले। और मेरे बगल में जो पड़ोसी हैं, उनको देखो, और एक मैम और एक वो दोनों हैं। जी हाँ, मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। एक हैं ठाकुर अतिबल सिंह, थाने में हेड कांस्टेबल साहब, और दूसरे हमारे पड़ोसी मुंशी बैजनाथ, तहसील में पटवारी। दोनों ने क्या भाग्य पाया है। हालांकि दोनों का वेतन मुझसे ज्यादा नहीं है, परंतु दोनों का जीवन मुझसे बेहतर है। शाम हुई नहीं कि हमारे कांस्टेबल साहब खमीरा पीकर मस्त हो जाते हैं, आराम कुर्सी पर पसर जाते हैं। और दूसरे मुंशी जी, उनका तो कहने क्या, अरे कचहरी से आते ही बच्चों को पैसे और मिठाइयां बांटते हैं, घर में पकवान बनते हैं, घर में सब सुख सुविधाओं का सामान है, एक बोतल रोज की साफ कर जाते हैं। और तो और, नशा चढ़ने पर बेतान की तान कर पूरे मोहल्ले की नींद उड़ाते हैं, सो अलग।

देखो तो सही, ये दोनों तो इतना भी नहीं जानते कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी का नहीं। साधारण से पहाड़ों तक का ज्ञान नहीं है।

0: मर्जी है।
1: मगर ईश्वर ने इन पर पूरी कृपा दृष्टि की हुई है। बाजार निकल जाएं तो बनिए उठ उठ कर सलाम करते हैं इन्हें। चार पैसे की चीज टके में लेकर आते हैं टके में। और एक मैं पंडित चंद्रधर प्राइमरी स्कूल में मास्टर। यहां तो महीना भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपए देखने को मिलते हैं। ना खाने का सुख ना पहनने का आराम। भाग्य ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया जो कभी शेर आ शेर दूध भेज दिया, थोड़ी सी सब्जियां भेज दी। अरे कौन सा मुझ पर एहसान करते हैं, मैं इनके बच्चों को नहीं पढ़ाता क्या? बातें तो सुनो इनकी।
2: पंडित जी, ये तीनों लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिएगा। अब आप तो जानते हैं मुझे थाने से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाती है तो फिर ये काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर।
1: अजीब बात तो ऐसी करते हैं जैसे इनका गुलाम हूं मैं। लेकिन करूं क्या? अजी नाराज भी तो नहीं कर सकता इन दोनों को। अरे ये हैं तो कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते हैं, अचार चटनी चखने को मिल जाती है, बाजार से सामान भी सस्ता ही मिल जाता है। भाग्य के इस कड़वे घूंट को मुझे पीना ही पड़ेगा। अरे क्या कोशिश नहीं की मैंने इस स्थिति से उभरने के लिए। बड़े बड़े अफसरों से खुशामद दरामद की, प्रार्थनाएं भी की, लेकिन हार थककर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही रही, वही स्कूल टीचरी। लेकिन मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने देता भाई। ठीक समय पर स्कूल जाता हूं और देर से घर वापस आता हूं, और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता हूं। तभी तो सभी अफसर खुश हैं मुझसे। साल में कभी कभार इनाम भी मिल ही जाता है। वो बात अलग है कि अध्यापन विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग भी मुझसे संतुष्ट हैं। ये मेरे परिश्रम के कारण ही तो हुआ है कि छात्रों की संख्या बढ़ गई है। छात्र भी मुझ पर जान देते हैं जान। हाँ, अरे कोई बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता है। अब बस मेरे लिए तो यही बात।

0: आओ आओ ठाकुर साहब आओ, मैं आप ही को याद कर रहा था।
1: याद कैसे नहीं करोगे, चोली दामन का साथ जो ठहरा।
0: अरे भाई आप तो बारिश में भीग गए, बैठिए।
1: हाँ भाई। मुंशी जी, मेरे मन में अयोध्या जी के दर्शन का विचार आया है और वही सलाह करने आपके पास आया हूँ।
0: नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद आपसे इसी बात का जिक्र करने वाला था। सुना है बड़ा भारी मेला लगा हुआ है।
1: जी हाँ, लेकिन दूर की यात्रा है, सब परिवार जाने में समस्या नहीं आएगी। अब पांच घर वाले तो हम ही हो जाएंगे।
0: वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भाभी और दोनों बच्चों ने मेले में जाने की जिद पकड़ रखी है, हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी।
1: आप हाँ करो तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। वो आपने पंडित जी है ना, उनको भी साथ ले लेते हैं, उनके आने जाने का खर्चा हम मिलकर बांट लेंगे।

0: को भी अयोध्या जी के दर्शन हो जाएंगे।
1: एक हफ्ता बिल्लौर में न रहने से उनके कौन से काम रुक जाएंगे। लीजिए, आखिरकार अयोध्या जी की यात्रा की वो शुभ घड़ी आ ही पहुंची।
0: पंडित जी, गाड़ी तो ठीक समय पर ही है ना?
2: जी, मैंने पता कर लिया है, 1.5 घंटे देर से है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। अभी बेहतर होगा कि खाना पीना अभी कर लिया जाए।
3: ये ठीक रहेगा।
4: कृपया ध्यान दीजिए, अयोध्या जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब से बस कुछ ही समय में आने वाली है।
1: चलो भाई, सब लोग अपना सामान ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। पंडित जी, जरा हाथ तो बटाइए।
2: अरे बच्चों, बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ।
0: अजी सुन तो हो, देखो देखो चुन्नी का हाथ छूटा जाता है। अरे हटिए भाई साहब, जरा जगह दीजिए, बच्चे हैं। अरे दिखता नहीं क्या, बच्चे हैं, हटिए हटिए।
1: अरे ओ, मेरा बिस्तर बन लिए कहाँ जा रहा है, रास्ता देख, आगे बढ़ने दो, हटो पीछे, हट हट। देखता नहीं महिला है।
2: अरे अरे रास्ता, अरे रास्ता तो दो। अरे मेरी तो चटनी बना दी कमबख्तों ने। अरे अरे मुंशी जी, ओ मुंशी जी, अरे मुंशी जी कौन से डिब्बे में चढ़े जा रहे हैं?
1: पंडित जी चढ़ने दीजिए, आइए हम सब इसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इस आफत में कौन किसकी राह देखता है, बाद में तो सब एक ही जगह मिल जाएंगे।
5: अरे भगवान, तुम बच्चों को लेकर वाले पर हो, सर की जगह लाना हो।
6: अरे भैया,
0: अरे हटिए भाई साहब,
6: नहीं नहीं जगह दीजिए।
1: अरे इस कंपार्टमेंट में तो 4 ही आदमी है, यहाँ बैठने की जगह अवश्य निकल आएगी। उठो।
0: है क्यों उठे जी,
1: देखते नहीं है, हैं हम खड़े हुए। बैठो जी, आप बैठो, आप बैठो।
0: तुमने बैठने का ठेका लिया है क्या?
1: क्या हमने किराया नहीं दिया है?
0: जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो।
1: जरा होश की बातें करो, इस कंपार्टमेंट में 10 यात्रियों को बैठने की आज्ञा है।
0: जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
1: तुम कौन हो जी?
0: हम वही हैं जी जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, भूल गए? और जिसके दरवाजे से आप नकद 25 रुपए लेकर टले थे।
1: आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पाते।
0: और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की है कि गाड़ी में खड़े रहने दिया, ढकेल देता तो तुम नीचे गिर जाते और तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती।
7: क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते?
1: अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता।
7: और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते हुजूर? इसमें कौन सी बेइज्जती हुई जाती है? ये थाना थोड़ा ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा।
1: अरे क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है?
7: जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ।
1: मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी।
7: जी आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले की बात है, आपने मुझे कई डंडे लगाए थे, याद है ना? मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज इसकी दवा मिलेगी।
0: अरे जनाब, आप पांव पसार कर पड़े रहिए, जो भी होगा निपट लेंगे।
2: अजी ठाकुर साहब, जाने दो, वक्त का यही तकाजा है। वो देखो, तीसरा स्टेशन आ रहा है, वहां उतर कर डिब्बा बदल लेंगे। हाँ। आइए ठाकुर साहब, डिब्बा बदल लेते हैं। संभाल के। ये क्या, ठाकुर साहब तो मुंह के बल गिर गए। ठाकुर साहब, चोट वोट तो नहीं लगी ना?
1: अगर ये दोनों थाने में होते तो आज बताता ठाकुर अतिबल सिंह चीज क्या है। वो तो गार्ड ने सीटी दे दी।

0: और इस डिब्बे से इस डिब्बे में सामान उठाकर रखना पड़ा, नहीं तो गार्ड से कहकर इन्हें हवालात का दरवाजा दिखा देता। अभी ये मुझे क्या धक्का देंगे और क्या मेरा सामान फेंकवाएंगे?
1: अरे इतनी भीड़ में ना जाने मुंशी जी किस हाल में होंगे, दिखाई नहीं दे रहे, देखता हूँ।
2: अजी देखते हो, बैठने की जगह भी तो बने, तिल रखने की जगह तो है नहीं, आप भी पता नहीं किस डिब्बे में आ चढ़े।
3: अरे भगवान, मैं तो पहले ही मना करता था कि इतनी भीड़ में अयोध्या जी की यात्रा कोई हंसी खेल नहीं है। ए भाई साहब, जरा महिला और बच्चों का लिहाज तो करो, थोड़ा सा जरा टिक जाने दो भाई।
4: मुझे तो इस कोयले पानी का ही सहारा है,
5: इसकी पिनक में ही सफर कट जाए।
3: चुन्नू की मम्मी, अपनी जगह पकड़े रहना, मैं अभी आया।
2: अच्छा।
4: देखो क्या हाल है, अरे पेशाब घर में भी घुसे पड़े हैं, आदमी को बुलावा आए तो कहाँ जाएगा। ए भाई, ए लघु शंका का दबाव है, बाहर आओ, चलो निकलो, जल्दी करो भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पी लेता हूँ, आधी बोतल यहीं उंडेल लेता हूँ। अब कम से कम 4-6 घंटे का पता ही नहीं चलेगा, सफर चैन से कट जाएगा। अब बच्चों के पास चला जाए।
2: सुनो जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, तनिक टिक जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ।
4: तुम बैठी रहो, ठीक है। पता नहीं ये पेट में कैसी गुड़गुड़ मची है, अचानक बहुत दबाव बन गया है, मैं अभी आता हूँ।
2: अजी क्या हुआ, आप ऐसे पेट क्यों पकड़े हैं?
4: भगवान, पेट में भयंकर मरोड़ हो रही है, उल्टी भी हो गई, बहुत कष्ट हो रहा है।
2: हाय हाय, आप बैठ जाइए।
4: बैठ नहीं पाऊंगा, फिर दबाव है, होकर आता हूँ, क्या करें, संडास में ही लोग ठुसे बैठे हैं।
2: आइए ऐसा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, यहीं पर उतर जाते हैं। चलो बच्चों आओ, आप भी आइए, संभल कर जरा।
1: अरे ठाकुर साहब, मुंशी जी, भाभी और बच्चे, ये लोग तो यहीं उतर गए, सब सामान भी है, पता नहीं क्या माजरा है।
0: अरे ये तो लेट गए, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उतारना तो पड़ेगा ही। चलो भाई जल्दी करो।
1: हाँ, उतरते हैं, चलो भाई।
2: हाय हाय, ये क्या हो गया, मैं तो हपड़ा तबड़ी में संदूक उतारना ही भूल गई। हाय राम, मेरे तो सारे कपड़े, लत्ते, पैसे, जेवरात सब उसी में ही चले गए, अब क्या होगा जी, अब क्या होगा। हे भगवान।
1: अरे अरे अरे
0: अरे, अरे भाभी क्या हो गया है, क्यों रो रही हो?
2: देखिए ना भाई साहब, मेरा तो संदूक गाड़ी में ही चला गया, कपड़े और पैसे भी उसी में ही थे।
1: अरे भाभी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि मुंशी जी को क्या हुआ?
3: क्या बताऊं, इतनी भीड़, इतनी गर्मी, न बैठने को जगह, न खाने की सुविधा, एक आध बार स्टेशन का पानी पी लिया है, उसी से पेट गड़बड़ हो गया, मारे उल्टी दस के हालत खराब है।
6: ये प्लेटफॉर्म पर क्यों लेटे हैं, आप लोगों को कहाँ जाना है? लगता है इन्हें हैजा हो गया है, और हैजे के मरीज को प्लेटफॉर्म पर ठहरने की अनुमति नहीं है, बेहतर होगा आप इन्हें यहाँ नज़दीक जिला अस्पताल है वहाँ ले जाइए।
0: भाई पंडित जी चलिए सहारा दीजिए, इन्हें वहाँ सामने पेड़ के पास लिटाए देते हैं, तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ।
1: हाँ ठीक है, आओ भाई जरा हाथ लगा दो भाई। हाँ
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
7: जी हाँ, कहिए, यहाँ का मैं कंपाउंडर डॉक्टर और बस सब मैं ही हूँ, सभी मुझे चौकीलाल कहते हैं।
0: आप चलकर उन्हें देख लीजिए।
7: सवेरे के समय तो मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है।
0: तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं?
7: आपका जी चाहे तो ले आइए। हाँ

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। हाँ।
1: अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं?
0: जी हाँ, खूब पहचानता हूँ, पहचानता हूँ मैं।
1: अरे भाई पहचान कर भी इतना रूखापन, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया है।
0: हाँ ये सब काम मैं कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है।
2: अस्पताल में कैसी फीस जनाबे मन?
0: वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन।
2: आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
0: मेरा घर बिल्लौर में है, वहाँ एक थोड़ी सी जमीन है मेरी, साल में दो बार देखभाल करने के लिए जाता हूँ। और मुंशी जी अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। जरा सोचिए हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। अब मेरी फीस 10 रुपये निकालिए ताकि दवा दूं।
2: 10 रुपये?
0: जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज।
3: दरोगा जी विवश हो गए, मुंशी जी की स्त्री से रुपए मांगे, मगर रुपए तो बक्से में थे और बक्सा ट्रेन में ही छूट गया था। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखे लाल को दे दिए और उन्होंने दवा दे दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ, रात को कहीं जाकर हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम ना था बाजार में बेचा गया, तब कहीं जाकर काम चला। शाम तक मुंशी जी भी चंगे हो गए। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर पर तो जगह ही नहीं थी, हर घर में आदमी भरे हुए थे। अंत में एक पेड़ के नीचे डेरा जमाना निश्चित हुआ, लेकिन सब जगह यात्री थे। खुले आसमान के नीचे बिस्तर बिछाए गए। इतने में बादल घिराए, बारिश होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फटे जाते थे, बच्चे रोने लगे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। वहां ठहरना मुश्किल था, पर जाएं कहां। अकस्मात एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। वो जब निकट पहुंचा तब पंडित जी ने उसे देखा, आकृति कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई, तो वो पास जाकर बोले,
4: क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी?
5: अरे आप तो पंडित चक्रधर तो नहीं?
4: जी हाँ, आप मुझे कैसे पहचानते हैं?
5: चरण स्पर्श पंडित जी, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर है, मेरे पिताजी कुछ

0: तो तुम्ही हो कृपा शंकर। अरे भाई, तब तो तुम दुबले पतले से लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे इस बात को।
1: जी हाँ, 9 साल था।
0: हाँ।
1: मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया।
0: अच्छा,
1: अब यहाँ म्युनिसिपैलिटी में नौकर हूँ।
0: हाँ।
1: कहिए, आप तो अच्छे हैं ना, सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए।
0: भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। वैसे तुम्हारे पिता कहाँ हैं?
1: उनका तो देहांत हो गया, माताजी साथ हैं। आप यहाँ कब आए?
0: आज ही आया हूँ बेटा, पंडों के घर जगह नहीं मिली, विवश होकर यहीं रात काटने की सोच रहा हूँ।
1: क्या बाल बच्चे भी साथ में हैं?
0: नहीं नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और पटवारी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ में हैं।
1: कुल कितने लोग होंगे?
0: हैं तो 10,

0: यहीं रात काटने की सोच रहा हूँ।
1: क्या बाल बच्चे भी साथ में हैं?
0: नहीं नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और पटवारी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ में हैं।
1: कुल कितने लोग होंगे?
0: हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में गुजारा हो जाएगा।
1: थोड़ी सी क्यों, मेरा पूरा मकान खाली पड़ा है।
0: अरे वाह,
1: चलिए आराम से 1, 2, 3 जितने दिन चाहे रहिए।
0: अरे वाह,
1: मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला।
0: अरे वाह वाह वाह, बेटा जीते रहो जीते रहो।
2: कृपा शंकर ने कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था, नौकरों ने चटपट चारपाइयां बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगीं। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, उसके विनय और नम्रता ने सबको खुश कर दिया था। और सब लोग तो खा पीकर सो गए, किंतु पंडित जी को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी, रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खरोंच के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपा शंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन किया। 3रे दिन जब लोग चलने लगे, तब वो स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सजल नेत्रों से उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए।
1: कभी कभी सेवक को याद करते रहिएगा।
0: मुझे अब जीवन पर्यंत इसी विभाग की सेवा में रहना है, मेरे लिए तो इससे अलग अब कुछ भी नहीं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 9वीं कड़ी बोध। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, गौहर परवेज शिमाइला, अशोक शर्मा, हीरेंद्र झा, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

संग्रहालय से मैं अभी आपने सुना जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी का प्रसारण आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों, पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय 12:58 होने जा रहे हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है, जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीति साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए दो दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के भारत भवन में हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी प्रसंग पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का शुभारंभ किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। अप्रस्तुत है महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान है।

बहनों, रिश्ते कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं। रिश्ते तो हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए साथ, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं। बहनों, इसी सुविचार के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महिला सभा के इस अंक में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रतिभा चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए मेरा सस्नेह नमस्कार। बहनों, आज के दिन को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाने की खास वजह ये है कि आज यानी 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती है। इनका जन्म 8 मई 1828 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। सन 1901 में शांति के क्षेत्र में कार्य के लिए उन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। बहनों, ये दिन युद्ध, आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों के दौरान निस्वार्थ सेवा देने वाले वॉलंटियर्स को सम्मानित करने और मानवीय सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में घायलों और पीड़ितों की मदद करने वाले सेवकों के प्रयासों की सराहना करना है। लोगों को जागरूक करने की दिशा में स्वास्थ्य संकटों और मानवता के प्रति रेड क्रॉस के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। बहनों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 मानवता, करुणा और सेवा के महत्व की एक सशक्त याद दिलाता है। मानवता को जीवित रखना की थीम के साथ ये दिन उन लाखों स्वयं सेवकों को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने और विश्व भर में संकटों को कम करने के लिए काम करते हैं। बहनों, ये एक गैर सरकारी मानवतावादी संगठन है जो युद्ध, आपदा, महामारी, भुखमरी और अन्य लोकतंत्र में धार्मिकों को सहायता प्रदान करता है। ये संस्था किसी भी जाति, धर्म, रंग या राष्ट्रीयता से जुड़े सभी उद्यमियों की मदद करती है।

रेड क्रॉस के 7 मूल सिद्धांत हैं, मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता। बहनों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस डे की शुरुआत 1948 में हुई थी। आज हेनरी ड्यूनेट की प्रेरणा से 192 देशों में नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट कमिटीज टूल्स है, जिसमें ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो बहनों, अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर, और अब रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में गाइड फिल्म से ये गीत। शैलेंद्र की रचना को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

0: कहा जाता है जान है तो जहान है। बहनों, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। आप चाहे पैदल हों या साइकिल पर, दो पहिया या चार पहिया की सवारी कर रहे हों, हर हाल में सावधानी बरतना जरूरी है। ट्रैफिक लाइट्स के दिशा निर्देशों का पालन करें, साथ ही सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर अंकित निर्देशों के पालन में कोताही ना बरतें और वाहन की गति हमेशा धीमी रखें। साथ ही हेलमेट का उपयोग करें। बहनों, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WHO द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये एक द्विवार्षिक अभियान है जो 8 मई से 12 मई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और चोटों को कम करना है। बहनों, इसका मुख्य फोकस पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इसका महत्व सड़क सुरक्षा को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में उजागर करता है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं वैश्विक स्तर पर मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण बनती हैं। इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने वाली सुरक्षित सड़कों की मांग करना है। बहनों, ये अभियान दुनिया भर के नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम, हेलमेट वितरण और ब्लैक स्पॉट को ठीक करने जैसे सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट सीट बेल्ट के ड्राइविंग को रोकना है। बहनों, सड़क पर चलते समय सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर एक की जिंदगी बहुत कीमती है। और ये तो हमने आपको जानकारी दी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। और बहनों, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बहनों, हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर वार्ताएं लेकर आते हैं और आज की वार्ता का विषय है रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी, और वार्ताकार हैं कीर्ति सक्सेना।
1: ब्लड हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ब्लड प्रत्येक मनुष्य एवं जीव जंतुओं में पाया जाता है। ब्लड की एक निश्चित मात्रा का हमारे शरीर में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर में ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे ब्लड किससे मिलकर बना होता है। ब्लड एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोटीन पाए जाती है। ब्लड का लगभग 7% भाग प्रोटीन का ही बना होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथोम्योबिन मुख्य प्रोटीन है। प्लाज्मा में हॉर्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। कभी कभी ब्लड में कुछ बाहरी पदार्थ जैसे प्रोटीन, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। इन पदार्थों के पहुंचते ही प्लाज्मा विशेष प्रकार के पदार्थों का फॉर्मेशन होने लगता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, तथा जो पदार्थ एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन सामान्यतः प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंटीजन RBC में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इसी प्रकार कुछ एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ब्लड कोशिकाएं, रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं या ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीवों की रुधिर कणिकाओं में थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है, इसके बावजूद इनके मूलभूत लक्षण एक समान ही होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो कि गोल या अंडाकार कोशिकाएं हैं जो हल्के पीले रंग की होती हैं, लेकिन लाखों की संख्या में एकत्र होने पर ये लाल रंग की हो जाती हैं। मनुष्य की एक RBC का व्यास 7.5 μ तथा मोटाई 1.2 μ होती है। एक RBC लगभग 100 दिन तक ही जीवित रहती है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। RBC शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है। इसके साइटोप्लाज्म में लाल रंग का आयरन कंपाउंड पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल रंग का

होता है। सफेद रुधिर कणिकाएं जो कि अमीबा के समान अनियमित आकार की आरबीसी से बड़ी लेकिन संख्या के हिसाब से कम मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होती हैं। मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 5000 से 9000 तक की संख्या में सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। सफेद रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स सफेद रक्त कणिकाएं एवं एग्रेन्युलोसाइट्स सफेद रक्त कणिकाएं। थर्ड नंबर का है थ्रोम्बोसाइट्स जो कि 2 μ से 4 μ तक व्यास वाली अनियमित आकार की होती हैं। ये अत्यंत कोमल होती हैं और केवल 10 दिन तक ही जीवित रहती हैं। यह रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम के मनुष्य में औसतन 5 लीटर ब्लड होगा। मानव रुधिर लाल गाढ़ा एवं स्वाद में नमकीन तथा पारदर्शी होता है। प्रायः रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन के संवहन की दर में कमी आ जाती है। आरबीसी के अत्यधिक विनाश या धीमे निर्माण या विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी के कारण आरबीसी की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम जानेंगे रक्त की आवश्यकता कब पड़ती है। कभी कभी दुर्घटना होने पर या किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो को पूरा करने के लिए चिकित्सक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देकर उसकी रक्षा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को भी रक्त की अत्यंत आवश्यकता होती है जब वह व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है, क्योंकि इस व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में 1 से 4 घंटे का समय लगता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति की चोट में थक्का जमने में 2 से 8 मिनट का ही समय लगता है। इसीलिए हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की अधिक रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग के लिए अब तक कोई भी दवा नहीं है, इसका केवल इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देना रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्वस्थ रक्तदान क्यों और कैसे, अर्थात रक्तदान के समय हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। प्रायः रक्त देने वाला व्यक्ति डोनर अर्थात दाता एवं प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रापक अर्थात रेसिपिएंट कहलाता है। रक्तदान की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय 2 विपरीत रक्त समूहों वाले व्यक्तियों के रक्त को मिलाया जाता है, तब इन ब्लड्स की आरबीसी में आपस में चिपककर गुच्छा बना लेती है। गुच्छे कभी कभी पतली रुधिरवाहिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः रुधिरवाहिकाएं फट जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार आरबीसी के चिपकने की प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने वियना में स्थित अपनी प्रयोगशाला में आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन तथा प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडी का पता लगाया। इन्हीं एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर उन्होंने सन 1900 में ह्यूमन ब्लड को 3 वर्गों में डिवाइड किया। इसके 2 साल बाद 1902 में लैंड स्टीनर के ही स्टूडेंट ने एक और ब्लड ग्रुप की खोज की जिसे एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर AB नाम दिया गया। इस प्रकार लैंड स्टीनर एंड उनके छात्रों ने अपने मानव ब्लड ग्रुप्स को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी का अभाव होता है। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाई जाती हैं, इसमें एंटीजन का अभाव होता है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डोनर एंड रेसिपिएंट के ब्लड की जाँच की जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि डोनर की एंटीबॉडी रेसिपिएंट के विपरीत हो। ऐसी स्थिति में एग्लूटिनेशन नहीं होता क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल ए एंड AB ग्रुप के व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल बी एंड AB ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप का ब्लड केवल AB ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। साथ में ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन ना होने के कारण यह स्वयं ओ तथा अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां हैं कैंसर, TB, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या HIV का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, HIV संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने या HIV संक्रमित मां से गर्भावस्था में बच्चे को हो सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, TB, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या HIV का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, HIV संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने एवं HIV ग्रस्त संक्रमित माँ से उसके बच्चे को हो सकता है। यह HIV रोग लाइलाज है।

0: अतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड की जांच की जानी अत्यंत आवश्यक है ताकि यह संक्रमित बीमारियां ब्लड डोनेट करते समय संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना फैल सके। इसके साथ ही साथ संक्रमित सिरिंज को भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दिए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ तरीके से रक्तदान किया जाना चाहिए, अर्थात ब्लड ग्रुप्स एंड संक्रमित ब्लड की जांच करके ही रोगी व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए, जिससे हम उनके जीवन की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं एवं उनके जीवन को बचा सकते हैं।
1: रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी। अभी आपने ये वार्ता सुनी वार्ताकार कीर्ति सक्सेना से। जो खून तेरी रगों में बहता है वही मेरी रगों में बहता है, दान करते रहें अपने खून का, ये दान किसी को जीवन दे सकता है। और बहनों आप प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं फिल्म आराधना से। युगल स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी का और आनंद बख्शी की रचना को संगीत में पिरोया है SD बर्मन ने।

अभी आपने आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आराधना फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना और बहनों अब देते हैं आपको उपयोगी जानकारी।

जानकारी। बहनों, इन दिनों सूर्य देव के तीखे तेवर और ताप का प्रभाव चरम पर है। दिन का तापमान लगभग 45 डिग्री पहुंच गया है। झुलसाने वाली धूप और गर्म हवाएं सभी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। बहनों, ऐसी स्थिति में बचाव जरूरी है। गर्मी में तेज धूप और लू से बचने के लिए सुबह 10 से 11 बजे से सूर्यास्त तक बाहर जाने से बचें। गर्मी व धूप से बचने के लिए सूती या वायल के हल्के रंग के पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। बहनों, धूप में निकलने से पहले अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन लोशन या क्रीम का उपयोग करें और घर से बाहर जाते समय सिर व कानों को सूती दुपट्टा, अंगोछा या रूमाल से अच्छी तरह ढकें। मैंने उस चौड़ी किनारे वाली टोपी और यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहने। हाथों और पैरों को धूप से बचाव के लिए सूती दस्ताने और मोजे पहने। बहनों, पर्याप्त मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। नींबू पानी, नारियल पानी पीते रहें। बहनों, खान पान में ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करते रहें, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, दही, छाछ या मट्ठा, सतुआ का सेवन करते रहें। बहनों, गर्मी को देखते हुए दिन में 2 बार ठंडे पानी से स्नान करें और मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें। तला भुना ज्यादा मिर्च मसाले की बजाय हल्का और सादा भोजन करें। बहनों, घर को ठंडा रखने के लिए दिन में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। तेज धूप से बचाव के लिए हल्के रंग के मोटे पर्दे डालें। बहनों, बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। इन्हें धूप में हरगिज ना जाने दें और समय समय पर पानी, इलेक्ट्रोल व ग्लूकोज मिलाकर पिलाते रहें। बहनों, जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। बहनों, घर से बाहर जाते समय यदि जाना जरूरी ही है तो पानी की बोतल, भुंजे चने और गुड़ हमेशा अपने साथ रखें व समय समय पर इनका सेवन करते रहें। बहनों, ये छोटी छोटी सावधानियां हमारे परिवार को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी हैं। और बहनों, गर्मी के मौसम में मूक पशु पक्षियों के लिए भी चारे और दाने सहित पानी की व्यवस्था भी जरूर करें। इनके लिए किया गया आपका सेवा सहयोग आपको बहुत सुकून देगा। बहनों, आए हैं इस धरती पर तो कुछ अच्छा कार्य करते चलें। प्रकृति की रक्षा के लिए एक पेड़ लगाएं और वृक्षारोपण का ध्यान रखें। किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद कर उसके चेहरे पर आप मुस्कान ला सकते हैं और हर परिस्थिति में अच्छी सोच रखें और सकारात्मक रहें। बहनों, अब चलने का समय हो गया है तो इतना जरूर कहूंगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और बहनों, इसी के साथ अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज

0: के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का, और इस लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का ये योगदान, जिसमें आज कलाकार हैं राजू पटेल और साथी। आइए इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये गुरु महिमा।

पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये गुरु महिमा सुनी, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। इसमें आप सुनेंगे चंद गज़लें, कलाकार हैं इकबाल सिद्दीकी।

0: आओ मिलकर सच कर दे हम धरती माँ का सपना,
1: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
2: आपकी पहचान आपके विचार, अब हर घर तक पहुँचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: कवि श्री राग तेलंग।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
6: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और ये समय है फिल्म संगीत का कार्यक्रम का। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, रफी साहब का गाया है। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म का नाम

0: और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: पानी की हर बूंद है अनमोल,
4: बहने ना दें इसे बेमोल।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में अब आप सुनने जा रहे हैं असद भोपाली के ये शब्द। आवाज़ है आशा भोसले की, फिल्म का नाम गुमराह।

और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल इस मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे और अब मंदिर के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं होंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में श्री शाह भाजपा के सभी 207 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वहीं कल यानी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मातदंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। इस महाकुंभ में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और फिल्मकार डॉ. चंद्र प्रकाश द्विवेदी समेत देशभर के दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर 200 साल की पत्रकारिता की यात्रा पर एक खास प्रदर्शनी भी लगाई गई है और 8 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट लाइव कार्टून शो भी पेश करेंगे। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह में आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर

0: और दुर्घटना को रोक दी है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। मुरैना में बिजली गिरने और ग्वालियर विंध्य क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदलने का अनुमान है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा स्थित नेहरू पीजी कॉलेज में सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। वहीं छात्रों को पंजीयन दस्तावेज, सत्यापन, विषय चयन और फीस संबंधी जानकारी देने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नीमच में जलगंगा संवर्धन अभियान तहत ग्रामीण नल जल योजना के संचालन, संधारण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम सरपंचों, सचिवों एवं पंप ऑपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

0: रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी

0: 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का नाम था। कैफी आज़मी ने इस गीत को शब्द दिए थे, धुन थी मदन मोहन की। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवहाणकर ने, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने इस गीत के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी थी। ग्राम महसेवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, निनाजी घाड़े और स्वप्निल घाड़े साथ में अजय खिरोडकर ने इस गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। ये हैं अनिल कवचाले, नेहा, सबीहा, पूजा, सुषमा, स्मिता, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है स्कीम नंबर 71 इंदौर से। पुणे से अगला खत भेजा है प्रियंका, पंकज और आर्या ने। जरूर वरुड़ से ये खत लिख भेजा है बाबा साहेब बड़ौदे और चंद्र प्रभा बड़ौदे ने। ये खत आया है गांधी बाग आकोला से रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर, और हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शुएब, मुस्तफा खान, साथ में है रऊब भाई और शाहिद भाई। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर आप सुनेंगे लता मंगेशकर का गाया हुआ यह गीत।

रोशन का ये संगीतबद्ध किया हुआ नगमा है, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी की आवाज़, लता मंगेशकर की, फ़िल्म का नाम ममता, फरमाइशी नाम, गीत के बाद।

लता जी के गाए हुए इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमति पंचोलिया ने घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी हमें लिख भेजी थी। रेलवे कॉलोनी बटंडा से अगला खत आया है। जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक और शोभा नायक। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। उपाध्याय नगर देवास से मुरलीलाल वर्मा, मनीष और शिवम वर्मा। राजा रामनगर देवास से ही ये खत आया है। राजू अग्रवाल, मधु महाजन और राकेश अग्रवाल, ये दोस्त हमारे जो हैं, इन्होंने भी ये चिट्ठी लिख भेजी है। देवास से सुपरमार्केट से ये खत है प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज और सनी जसवानी का। हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल और निरंजन माली ने रूपा खेड़ी देवास से ही एक खत लिख भेजा है। जेल रोड देवास से अगली चिट्ठी आई है नवीन वर्मा और बबलू वर्मा की। गंगेड़ी ज़िला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालाग्राम, दशरथ बागवान, साथ में है कन्हैयालाल प्रजापति। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

संतोष आनंद ने इस गीत धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज कमलेश अवस्थी की और फिल्म का नाम प्यासा सावन।

और अब बारी है हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश की। ये हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने ये चिट्ठी लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से। लाल माता सुदामा नगर रेटलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से ये खत लिख भेजा है हमारे इन सभी सुनने वालों ने। हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बांगरी, जयराज प्लॉट राजकोट से इस खत लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट, इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत। साथ में आवाज़ है सुरेश वाडेकर की।

और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मार्तंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। और रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम इस सभा का समापन करें, उससे पहले आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर। सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 8:00। खेल जगत, इसे आप सुन सकते हैं 9:30 पर। 10:00 का समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन प्रसारित होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में प्रसारण समय रहेगा 10:30। ये थी जानकारी हमारे उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5:00 से सुन सकते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:02 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल

और लोक संगीत के इस कार्यक्रम के बाद है बारी सुगम संगीत के इस कार्यक्रम की। इसमें आप सुनेंगे इकबाल सिद्दीकी की गाई हुई कुछ गजलें। ईश्वर समान महिमा।

और उसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण DTH के ऑडियो चैनल पर। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

राहत फ़तेह अली ख़ान, शंकर महादेवन ने इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है, प्रसून जोशी ने शब्द दिए हैं। शंकर एहसान लॉय का संगीत है और फिल्म का नाम है लंदन 2।

और अब जो गीत आ रहा है उसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम और आशीष श्री ने, साथ में इस गीत को शब्द दिए हैं अमिताभ भट्टाचार्य, इरफान सिद्दीकी, प्रशांत पांडे और रोशन नरेश अय्यर।

जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत को आप सुनने जा रहे हैं। संगीतकार हैं शंकर एहसान रॉय और इस गीत को गाया है शफकत अमानत अली और साथ दिया है शंकर महादेवन ने। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना।

एटीएम मेट्रो फिल्म का ये गीत था। विशाल मिश्रा ने इसे गाया था, कौसर मुनीर ने शब्द दिए थे, धुन थी मार्क के रॉबिन की।

अरिजीत सिंह को आप सुन रहे हैं डंकी फिल्म में। इरशाद कामिल ने इस गीत को शब्द दिए हैं और संगीतकार हैं प्रीतम। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल मिश्रा का गाया हुआ ये गीत। एनिमल फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। राज शेखर इस गीत के शब्दकार हैं और धुन विशाल मिश्रा की ही है।

अरिजीत सिंह को आप सुन रहे हैं डंकी फिल्म में। इरशाद कामिल ने इस गीत को शब्द दिए हैं और संगीतकार हैं प्रीतम। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल मिश्रा का गाया हुआ ये गीत। एनिमल फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। राजशेखर इस गीत के शब्दकार हैं और धुन विशाल मिश्रा की ही है।

0: के ऑडियो चैनल पर। और अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बैठक में शुभेंद्र अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। और प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत साहिर ने लिखा था, धुन तैयार की थी मदन मोहन ने, फिल्म का नाम था लैला मजनू।
1: पलट, अरे पलट,
2: पलट के दरा दे।

0: राजी रह लूंगा।
1: पानी भरोगे?
0: हाँ जी।
1: चौका करोगे?
0: जी हाँ।
1: झाड़ू पीटोगे?
0: हाँ जी। आ? ना ना ना ना जी।
2: आप ये गीत सुन रहे हैं नाग पद्मिनी फिल्म से। बलबीर और सुधा मल्होत्रा ने इसे आवाज़ें दी हैं, प्रेम धवन ने शब्द दिए हैं और धुन है सन्मुख बाबू की।

अगला गीत है रोजा फिल्म से, एसपी बाला सुब्रमण्यम चित्रा ने इसे गाया है, पी के मिश्रा, गीतकार संगीतकार ए आर रहमान।

तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने, बोल थे समीर के, आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। फिल्म का नाम सड़क।

रवि का संगीत था, गीतकार थे शकील बदायूनी, दो बदन फिल्म का नाम था और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

0: ये कव्वाली आपने सुनी बरसात की रात फिल्म से, मन्ना डे, आशा भोसले, बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी। रोशन ने तर्ज बनाई थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे। और इसी कव्वाली के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 4:30 हुए हैं। आप सुनिए संग्रहालय से प्रोग्राम में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित प्रस्तुति। इसमें अब आप सुनने जा रहे हैं जादूगर को सलाम।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 9वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बोध का नाट्य रूपांतरण।
1: हाँ तो बच्चों, दो दुनी
2: चार,
1: पांच सत्ते
2: पैतीस,
1: ग्यारह निम्मे
2: निन्यानवे।
3: कहां से जंगल में आ फंसा? यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होता तो आज हाथ में चार पैसे होते, आराम से जीवन कटता। हमसे तो मजदूर ही भले। और मेरे बगल में जो पड़ोसी हैं, उनको देखो, और एक मैं और एक वो, दोनों हैं। जी हाँ, मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। एक हैं ठाकुर अतिबल सिंह, थाने में हेड कांस्टेबल साहब, और दूसरे हमारे पड़ोसी मुंशी बैजनाथ, तहसील में पटवारी। दोनों ने क्या भाग्य पाया है। हालांकि दोनों का वेतन मुझसे ज्यादा नहीं है, परंतु दोनों का जीवन मुझसे बेहतर है। शाम हुई नहीं कि हमारे कांस्टेबल साहब खमीरा पीकर मस्त हो जाते हैं, आराम कुर्सी पर पसर जाते हैं। और दूसरे मुंशी जी, उनका तो कहने क्या, अरे कचहरी से आते ही बच्चों को पैसे और मिठाइयां बांटते हैं, घर में पकवान बनते हैं, घर में सब सुख सुविधाओं का सामान है, एक बोतल रोज की साफ कर जाते हैं। और तो और, नशा चढ़ने पर बेतान की तान कर पूरे मोहल्ले की नींद उड़ाते हैं, सो अलग।

देखो तो सही, ये दोनों तो इतना भी नहीं जानते कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी का नहीं। साधारण से पहाड़ों तक का ज्ञान नहीं है।

0: पूरी कृपा दृष्टि की हुई है। बाजार निकल जाएं तो बनिए उठ उठ कर सलाम करते हैं इन्हें। चार पैसे की चीज टके में लेकर आते हैं, टके में। और एक मैं हूं पंडित चंद्रधर, प्राइमरी स्कूल में मास्टर। यहां तो महीना भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपए देखने को मिलते हैं, न खाने का सुख न पहनने का आराम। भाग्य ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया जो कभी शेर आ शेर दूध भेज दिया, थोड़ी सी सब्जियां भेज दी। अरे कौन सा मुझ पर एहसान करते हैं, मैं इनके बच्चों को नहीं पढ़ाता क्या? बातें तो सुनो इनकी।
1: पंडित जी, ये तीनों लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिएगा। अब आप तो जानते हैं मुझे थाने से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाती है तो फिर ये काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर।
0: अजीब बात तो ऐसी करते हैं जैसे इनका गुलाम हूं मैं, लेकिन लेकिन करूं क्या? अजी नाराज भी तो नहीं कर सकता इन दोनों को। अरे ये हैं तो कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते हैं, अचार चटनी चखने को मिल जाती है, बाजार से सामान भी सस्ता ही मिल जाता है। भाग्य के इस कड़वे घूंट को मुझे पीना ही पड़ेगा। अरे क्या कोशिश नहीं की मैंने इस स्थिति से उभरने के लिए, बड़े बड़े अफसरों से खुशामद दरामद की, प्रार्थनाएं भी की, लेकिन हार थक कर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही रही, वही स्कूल टीचरी। लेकिन मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने देता भाई, ठीक समय पर स्कूल जाता हूं और देर से घर वापस आता हूं, और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता हूं, तभी तो सभी अफसर खुश हैं मुझसे। साल में कभी कभार इनाम भी मिल ही जाता है। वो बात अलग है कि अध्यापन विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग भी मुझसे संतुष्ट हैं। ये मेरे परिश्रम के कारण ही तो हुआ है कि छात्रों की संख्या बढ़ गई है, छात्र भी मुझ पर जान देते हैं जान। हाँ अरे कोई बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता है। बस मेरे लिए तो यही बात।

0: आओ आओ ठाकुर साहब आओ, मैं आप ही को याद कर रहा था।
1: याद कैसे नहीं करोगे, चोली दामन का साथ जो ठहरा।
0: अरे भाई आप तो बारिश में भीग गए, बैठिए।
1: हाँ भाई, मुंशी जी मेरे मन में अयोध्या जी के दर्शन का विचार आया है और वही सलाह करने आपके पास आया हूँ।
0: नेकी और पूछ, मैं खुद आपसे इसी बात का जिक्र करने वाला था। सुना है बड़ा भारी मेला लगा हुआ है।
1: जी हाँ, लेकिन दूर की यात्रा है, सब परिवार जाने में समस्या नहीं आएगी। अब पांच घर वाले तो हम ही हो जाएंगे।
0: वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भाभी और दोनों बच्चों ने मेले में जाने की जिद पकड़ रखी है, हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी।
1: आप हाँ करो तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। वो आपने पंडित जी है ना, उनको भी साथ ले लेते हैं, उनके आने जाने का खर्चा हम मिलकर बांट लेंगे।
0: बात तो बड़े पते की है, मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं, इसी बहाने पंडित जी को भी अयोध्या जी के दर्शन हो जाएंगे।
1: एक हफ्ता बिल्लौर में न रहने से उनके कौन से काम रुक जाएंगे। लीजिए, आखिरकार अयोध्या जी की यात्रा की वो शुभ घड़ी आ ही पहुंची।
0: पंडित जी गाड़ी तो ठीक समय पर ही है ना?
2: जी मैंने पता कर लिया है, 1.5 घंटे देर से है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। अजी बेहतर होगा कि खाना पीना अभी कर लिया जाए।
3: ये ठीक रहेगा।
4: कृपया ध्यान दीजिए, अयोध्या जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब से बस कुछ ही समय में आने वाली है।
1: चलो भाई सब लोग अपना सामान ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं पंडित जी?

0: जरा हाथ तो बटाइए।
1: अरे बच्चों बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ।
2: अजी सुन तो हो, देखो देखो चुन्नी का हाथ छूटा जाता है। अरे हटिए भाई साहब, जरा जगह दीजिए, बच्चे हैं। अरे दिखता नहीं क्या, बच्चे हैं, हटिए हटिए।
0: अरे ओ मेरा बिस्तर बन लिए कहाँ जा रहा है, रास्ता देख, आगे बढ़ने दो, हटो पीछे, हट हट। अबे देखता नहीं महिला है।
1: अरे अरे रास्ता, अरे रास्ता तो दो। अरे मेरी तो चटनी बना दी कंबख्तों ने। अरे अरे मुंशी जी, ओ मुंशी जी, अरे मुंशी जी कौन से डिब्बे में चढ़े जा रहे
0: हैं? अरे जी चढ़ने दीजिए, आइए हम सब इसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इस आफत में कौन किसकी राह देखता है, बाद में तो सब एक ही जगह मिल जाएंगे।
2: अरे भगवान तुम बच्चों को लेकर आगे बढ़ो, संदूक लगा देना हो।
3: अरे भैया,
2: अरे हटिए भाई साहब,
3: भी नहीं देते
2: जगह दीजिए।
0: अरे इस कंपार्टमेंट में तो चार ही आदमी है, यहाँ बैठने की जगह अवश्य निकल आएगी। उठो।
4: हैं? क्यों उठे जी,
0: देखते नहीं है, हैं? हम खड़े हुए, बैठो जी, आप बैठो, आप बैठो।
4: तुमने बैठने का ठेका लिया है क्या?
0: क्या हमने किराया नहीं दिया है?
4: जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो।
0: जरा होश की बातें करो, इस कंपार्टमेंट में 10 यात्रियों को बैठने की आज्ञा है।
4: जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
0: तुम कौन हो जी?
4: हम वही हैं जी जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, भूल गए? और जिसके दरवाजे से आप नकद 25 रुपए लेकर टले थे।
0: आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पाते।
4: और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की है कि गाड़ी में खड़े रहने दिया, ढकेल देता तो तुम नीचे गिर जाते और तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती।
5: क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते?
0: अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता।
5: और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते हुजूर? इसमें कौन सी बेइज्जती हुई जाती है? ये थाना थोड़ा ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा।
0: अरे क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है?
5: जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ।
0: मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी।
5: जी आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले की बात है, आपने मुझे कई डंडे लगाए थे, याद है ना? मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज इसकी दवा मिलेगी।
4: अरे जनाब आप पांव पसार कर पड़े रहिए, जो भी होगा निपट लेंगे।
6: अजीत ठाकुर साहब जाने दो, वक्त का यही तकाजा है। वो देखो तीसरा स्टेशन आ रहा है, वहां उतर कर डिब्बा बदल लेंगे। हाँ आइए ठाकुर साहब, डिब्बा बदल लेते हैं। संभाल के। ये क्या ठाकुर साहब, तो मुंह के बल गिर गए। ठाकुर साहब चोट वोट तो नहीं लगी ना?
0: अगर ये दोनों थाने में होते तो आज बताता ठाकुर अतिबल सिंह चीज क्या है। वो तो गार्ड ने सीटी दे दी और इस डिब्बे से इस डिब्बे में सामान उठाकर रखना पड़ा, नहीं तो गार्ड से कहकर इन्हें हवालात का दरवाजा दिखा देता। अभी ये मुझे क्या धक्का देंगे और क्या मेरा सामान फेंकवाएंगे?
6: अरे इतनी भीड़ में ना जाने मुंशी जी किस हाल में होंगे, दिखाई नहीं दे रहे, देखता हूँ।
7: अजी देखते हो, बैठने की जगह भी तो बने, तिल रखने की जगह तो है नहीं, आप भी पता नहीं किस डिब्बे में आ चढ़े।
8: अरे भगवान, मैं तो पहले ही मना करता था कि इतनी भीड़ में अयोध्या जी की यात्रा कोई हंसी खेल नहीं है। ए भाई साहब, जरा महिला और बच्चों का लिहाज तो करो, थोड़ा सा जरा टिक जाने दो भाई।
9: मुझे तो इस कोयले पानी का ही सहारा है,
10: इसकी पिनक में ही सफर कट जाए।
8: चुन्नू की मम्मी अपनी जगह पकड़े रहना, मैं अभी आया।
7: अच्छा।
9: देखो क्या हाल है, अरे पेशाब घर में भी घुसे पड़े हैं, आदमी को बुलावा आए तो कहाँ जाएगा। ए भाई लघु शंका का दबाव है, बाहर आओ, चलो निकलो, जल्दी करो भाई।

0: हाँ हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पी लेता हूँ, आधी बोतल यहीं उंडेल लेता हूँ। अब कम से कम 4-6 घंटे का पता ही नहीं चलेगा, सफर चैन से कट जाएगा। अब बच्चों के पास चला जाए।
1: सुनो जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, तनिक टिक जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ।
0: तुम बैठी रहो, ठीक है? पता नहीं ये पेट में कैसी गुड़गुड़ मची है, अचानक बहुत दबाव बन गया है, मैं अभी आता हूँ।
1: अजी क्या हुआ, आप ऐसे पेट क्यों पकड़े हैं?
0: भगवान, पेट में भयंकर मरोड़ हो रही है, उल्टी भी हो गई, बहुत कष्ट हो रहा है।
1: हाय हाय, आप बैठ जाइए।
0: बैठ नहीं पाऊंगा, फिर दबाव है, होकर आता हूँ, क्या करें, संडास में ही लोग ठुसे बैठे हैं।
1: आइए ऐसा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, यहीं पर उतर जाते हैं। चलो बच्चों आओ, आप भी आइए, संभल कर जरा। हाँ बच्चों संभल कर।
2: अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मुंशी जी, भाभी और बच्चे, ये लोग तो यहीं उतर गए, सब सामान भी है, पता नहीं क्या माजरा है।
3: अरे ये तो लेट गए, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उतारना तो पड़ेगा ही। चलो भाई जल्दी करो।
2: उतरते हैं, चलो भाई।
1: हाय हाय, ये क्या हो गया, मैं तो हबड़ा तबड़ी में संदूक उतारना ही भूल गई। हाय राम, मेरे तो सारे कपड़े, लत्ते, पैसे, जेवरात सब उसी में ही चले गए, अब क्या होगा जी। अब क्या होगा। हे भगवान।
2: अरे अरे अरे
3: अरे,
2: अरे,
3: अरे भाभी क्या हो गया है, क्यों रो रही हो?
1: देखिए ना भाई साहब, मेरा तो संदूक गाड़ी में ही चला गया, कपड़े और पैसे भी उसी में ही थे।
2: अरे भाभी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि मुंशी जी को क्या हुआ?
0: क्या बताऊं, इतनी भीड़, इतनी गर्मी, न बैठने को जगह, न खाने की सुविधा, एक आध बार स्टेशन का पानी पी लिया है, उसी से पेट गड़बड़ हो गया, मारे उल्टी दस के हालत खराब है।
4: ये प्लेटफॉर्म पर क्यों लेटे हैं, आप लोगों को कहाँ जाना है? लगता है इन्हें हैजा हो गया है, और हैजे के मरीज को प्लेटफॉर्म पर ठहरने की अनुमति नहीं है, बेहतर होगा आप इन्हें यहाँ नज़दीक जिला अस्पताल है वहाँ ले जाइए।
3: भाई पंडित जी चलिए सहारा दीजिए, इन्हें वहाँ सामने पेड़ के पास लिटाए देते हैं, तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ।
2: हाँ ठीक है, आओ भाई जरा हाथ लगा दो भाई। हाँ
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
5: जी हाँ, कहिए, यहाँ का मैं कंपाउंड है डॉक्टर, और बस सब मैं ही हूँ, सभी मुझे चौकीलाल कहते हैं।
3: आप चलकर उन्हें देख लीजिए।
5: सवेरे के समय तो मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है।
3: तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं?
5: आपका जी चाहे तो ले आइए, ले आइए। हाँ

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। हाँ।
1: अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं?
0: जी हाँ, खूब पहचानता हूँ पहचानता हूँ।
1: अरे भाई पहचान कर भी इतना रूखापन, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया है।
0: हाँ ये सब काम मैं कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है।
2: अस्पताल में कैसी फीस जनाब एमन?
0: वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब एमन।
2: आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा।
0: मेरा घर बिल्लौर में है, वहाँ एक थोड़ी सी जमीन है मेरी, साल में दो बार देखभाल करने के लिए जाता हूँ। और मुंशी जी अपना हक वसूल कर लेते।

0: ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। जरा सोचिए हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। अब मेरी फीस 10 रुपये निकालिए ताकि दवा दूं।
1: 10 रुपये?
0: जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज।
2: दरोगा जी विवश हो गए। मुंशी जी की स्त्री से रुपए मांगे, मगर रुपए तो बक्से में थे और बक्सा ट्रेन में ही छूट गया था। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखे लाल को दे दिए और उन्होंने दवा दे दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ। रात को कहीं जाकर हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम न था बाजार में बेचा गया। तब कहीं जाकर काम चला। शाम तक मुंशी जी भी चंगे हो गए। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर पर तो जगह ही नहीं थी। हर घर में आदमी भरे हुए थे। अंत में एक पेड़ के नीचे डेरा जमाना निश्चित हुआ। लेकिन सब जगह यात्री थे। खुले आसमान के नीचे बिस्तर बिछाए गए। इतने में बादल घिराए, बारिश होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फटे जाते थे। बच्चे रोने लगे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। वहां ठहरना मुश्किल था, पर जाएं कहां। अकस्मात एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। वो जब निकट पहुंचा तब पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई तो वो पास जाकर बोले,
3: क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
4: अरे आप तो पंडित चक्रधर तो नहीं?
3: जी हाँ, आप मुझे कैसे पहचानते हैं?
4: चरण स्पर्श पंडित जी, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे पिताजी कुछ

0: तो तुम्ही हो कृपा शंकर। अरे भाई, तब तो तुम दुबले पतले से लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे इस बात को।
1: जी हाँ, 9 साल था।
0: हाँ।
1: मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया।
0: अच्छा,
1: अब यहाँ म्युनिसिपैलिटी में नौकर हूँ।
0: हाँ।
1: कहिए, आप तो अच्छे हैं ना, सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए।
0: भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। वैसे तुम्हारे पिता कहाँ हैं?
1: उनका तो देहांत हो गया, माताजी साथ हैं। आप यहाँ कब आए?
0: आज ही आया हूँ बेटा, पंडों के घर जगह नहीं मिली, विवश होकर यहीं रात काटने की सोच रहा हूँ।
1: क्या बाल बच्चे भी साथ में हैं?
0: नहीं नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और पटवारी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ में हैं।
1: कुल कितने लोग होंगे?
0: हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में गुजारा हो जाएगा।
1: थोड़ी सी क्यों, मेरा पूरा मकान खाली पड़ा है।
0: अरे वाह,
1: चलिए आराम से 1-2-3 जितने दिन चाहे रहिए।
0: अरे वाह,
1: मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला।
0: अरे वाह वाह वाह, बेटा जीते रहो जीते रहो।
2: कृपा शंकर ने कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था, नौकरों ने चटपट चारपाइयां बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, उसके विनय और नम्रता ने सबको खुश कर दिया था। और सब लोग तो खा पीकर सो गए, किंतु पंडित जी को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी, रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खरोंच के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता

0: ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन किया। 3रे दिन जब लोग चलने लगे तब वो स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सजल नेत्रों से उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए।
1: कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा।
2: मुझे अब जीवन पर्यंत इसी विभाग की सेवा में रहना है। मेरे लिए तो इससे अलग अब कुछ भी नहीं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 9वीं कड़ी बोध। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, गौहर परवेज, शिमाइला, अशोक शर्मा, हीरेंद्र झा, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जादूगर को सलाम की नौवीं कड़ी। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री शाह भाजपा के सभी 207 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों, आपका स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे आपके मनोरंजन के लिए मधुर गीत भी। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक महंगाई मापने के प्रमुख उपकरण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाले वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। यह आम लोगों की जीवन यापन लागत को समझने में मदद करता है। CPI में खाद्य पदार्थ, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से उत्पादकों और व्यापारियों के स्तर की महंगाई को दिखाता है। WPI में कच्चा माल, ईंधन और विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। CPI का उपयोग आमतौर पर मौद्रिक नीति बनाने में किया जाता है, जबकि WPI से उत्पादन लागत और आपूर्ति की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जाता है। CPI सीधे आम जनता को प्रभावित करता है, जबकि WPI अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। दोनों सूचकांक मिलकर अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। अगर CPI बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने का संकेत मिलता है। WPI में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ने का संकेत मिलता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन सूचकांकों के आधार पर नीतियां बनाते हैं, इसलिए CPI और WPI दोनों आर्थिक विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, ये तो थी हमारी एक छोटी सी जानकारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है जल संरक्षण। वार्ताकार हैं सुमुख रावत।
1: सभी को नमस्कार, और आज हम जल के संरक्षण और जल के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जल संरक्षण वर्तमान समय की महती आवश्यकता। जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी अनिवार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया का लगभग 40% आबादी को पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। जल संकट लगातार बढ़ रहा है, और यदि इस पर तुरंत

ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। जल का अनावश्यक उपयोग, जल स्रोतों का दूषित होना और जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा में अनिश्चित जल संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गया है। जल संकट के महत्व, जल संकट के कारण, जल संरक्षण के विभिन्न उपायों और इससे जुड़े सामाजिक तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण का अर्थ है जल के उपयोग को अनुकूलित करना, जल की बर्बादी को रोकना और जल स्रोतों की रक्षा करना। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, मानव जीवन का आधार। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यह पीने, खाना पकाने, स्वच्छता बनाए रखने, कृषि और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाता है। दूसरा, कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि क्षेत्र जल पर अत्यधिक निर्भर करता है। सिंचाई के बिना खेती असंभव है। जल की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। नदियाँ, झीलें और समुद्र कई जीवों का प्राकृतिक आवास है। जल स्रोतों की कमी से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है और पारिस्थितिक असंतुलित हो जाती है। चौथा, ऊर्जा उत्पादन में योगदान। जल का उपयोग बिजली हाइड्रो पावर उत्पादन में किया जाता है। यदि जल संकट बढ़ता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है जिससे औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पांचवा, औद्योगिक और आर्थिक विकास। अधिकांश उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। यदि जल की उपलब्धता सीमित हो जाती है तो औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान जल संकट और इसके कारण, जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन। भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन जल संकट का एक प्रमुख कारण है। उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए लगातार बढ़ते दोहन ने भूमिगत जल स्तर को अत्यधिक गिरा दिया है। जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और घरेलू गंदगी जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। इससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित वर्षा। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न अनिश्चित हो गया है। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। शहरीकरण के कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है जिससे जल संकट और भी गंभीर हो गया है। जल प्रबंधन की कमी। भारत जैसे देशों में जल प्रबंधन की कमी भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। जल संचयन और जल पुनर्चक्रण वाटर रिसाइकलिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जल का अपव्यय हो रहा है। जल संरक्षण के उपाय। वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग जल संकट को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए विधियां अपनाई जा सकती हैं। छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल संरक्षण किया जाए। तालाबों और कुओं का पुनरुद्धार किया जाए। ग्रामीणों क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन तकनीकों को अपनाया जाए। भूमिगत जल पुनर्वरण ग्राउंड वाटर रिचार्ज। कुओं, तालाबों और बावड़ियों की सफाई कर उन्हें जल संरक्षण के लिए उपयुक्त बनाए जाए। सड़कों और घरों के पास परकुलेशन टैंक बनाए जाए ताकि वर्षा जल जमीन में समा सके। सिंचाई में जल की बचत, टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग किया जाए। कम पानी वाली फसलें उगाई जाएं। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए। घरेलू स्तर पर जल की बचत, नलों को खुला ना छोड़ें और टपकते नलों को ठीक कराएं। बाल्टी से नहाने को प्राथमिकता दें। शावर को कम उपयोग करें। कपड़े और बर्तन धोने में पानी ही कम खर्च करें। उद्योगों में जल संरक्षण, जब जल पुनर्चक्रण तकनीकों को अपनाएं, औद्योगिक कचड़े को जल स्रोतों में बहाने से रोकें, कारखानों में जल उपयोग की प्रभावी निगरानी हो, जल स्रोतों का संरक्षण, नदियां, झीलें और जलाशयों की सफाई और पुनरुद्धार किया जाए, जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण किया जाए, जन जागरूकता अभियान, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जल संरक्षण पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, जल संरक्षण पर सामाजिक अभियानों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और समाज की भूमिका। सरकार नीतियों और योजनाएं, नमामि गंगे जैसी योजनाएं का विस्तार किया जाए। जल संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसानों को जल बचाने की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाए। समाज की भूमिका। प्रत्येक नागरिक को जल की बचत के लिए

0: प्रयास करने चाहिए। सामाजिक संगठनों को जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। युवाओं को जल संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम जल को बचाने के लिए अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में जल संकट और भी गहरा हो सकता है। हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर मिलकर जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जल बचाने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना होगा, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा और जल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। सरकार, उद्योगों और आम जनता को मिलकर जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा। जल है तो कल है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यदि हम जल संरक्षण के लिए अभी से कार्य करें तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जल की हर एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था जल संरक्षण। वार्ताकार थे सुमुख रावत। साथियों, कार्यक्रम का रुख मोड़ देते हैं अब मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म कारवां से, जिसमें आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, जिसके गीतकार थे आकर्ष खुराना और संगीत से सवारा था अनुराग साइकिया ने। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज है 8 मई, यानी आज ही के दिन हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। तो हम आपको दे देते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानवता, सेवा और करुणा के मूल्यों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह दिन हेनरी ड्यूनांट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद के लिए एक वैश्विक मानवीय संगठन की नींव रखी। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, आपदा और संकट में राहत कार्यों के महत्व को समझाना, स्वयंसेवकों के योगदान को सम्मान देना। रेड क्रॉस संगठन दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, रक्तदान शिविरों का आयोजन, शरणार्थियों और जरूरतमंदों की मदद करना। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न संकटों से जूझ रही है, रेड क्रॉस जैसे संगठन मानवता के लिए उम्मीद की किरण है। यह हमें सिखाता है कि बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह याद दिलाता है कि छोटे छोटे प्रयास भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सेवा, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। साथियों, आपको लेकर चलते हैं हमारी आखिरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। सड़क सुरक्षा एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुका है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन बचा सकता है। तेज गति और लापरवाही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनती हैं। नशे में वाहन चलाना बहुत खतरनाक होता है। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा भी दी जाती है। सरकारें बेहतर सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने पर जोर देती है। यह सप्ताह युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश फैलाया जाता है। आपातकालीन सेवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित ड्राइविंग करे। छोटी छोटी सावधानियां बड़े हादसों को रोक सकती हैं। यह अभियान सुरक्षा पहले की सिद्धांत को बढ़ावा देता है। मिलकर प्रयास करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो साथियों, हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। साथियों, ये तो थी हमारी एक चर्चा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। साथियों, वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस मधुर गीत के साथ।

साथियों, अभी हमने सुना फिल्म अखियों के झरोके से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज़ थी हेमलता की, जिसके गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। साथियों, अब जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। RRB योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक लोको पायलट यानी ALP, जिसमें पदों की संख्या है 11,127। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.indianrailwaysgovernment.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक अंतराल।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपकी पहचान, आपके विचार।

0: अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार, बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनिए अग्निपथ फिल्म से ये गीत। अजय की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए बोल और उसे संगीत से सजाया है अजय अतुल ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब सुनिए केदारनाथ फिल्म से ये गीत, गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं इसके बोल और अमित त्रिवेदी ने सजाया है इसे संगीत से।

अगली आवाज़ सुनिए वेद शर्मा की मलंग फिल्म से। ये गीत लिखा है कुणाल वर्मा, हर्ष लिम्बाचिया, और संगीत दिया है वेद शर्मा ने।

अगला गीत सुनिए लक्ष्मी फिल्म से शशि डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती की आवाज़ है, गगन आहूजा के बोल हैं और संगीत है शशि और डीजे खुशी का।

अगला गीत सुनिए लव आजकल फिल्म से, शाश्वत सिंह और अरिजीत सिंह की आवाज़ है, इरशाद कामिल के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

Deadwish. और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या इस वर्ष मार्च तक 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित यह योजना सेवानिवृत्त के बाद नागरिकों को लंबे समय तक के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। और IPL में आज शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
0: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
0: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
0: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
0: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
0: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
0: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी।
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
0: जी,
1: तो सबसे पहली जानकारी है पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी, समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@ciet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।

0: कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे।

0: भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि

0: भी साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रवींद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ

0: चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
1: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
0: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
1: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर

0: वैम को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है, मेरी जगह वही है धरती की गोद, इन पेड़ों इन जंगलों में, इस धूल इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शिद्दत फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसके गायक, गीतकार और संगीतकार हैं मनन भारद्वाज।

अगला गीत सुनिए सत्यमेव जयते टू फिल्म से, ज़ारा एस खान और देव नेकी की आवाज़ है और तनिष्क बागची गीतकार व संगीतकार हैं।

अगली आवाज़ सुनिए रश्मीत कौर की और शामूर की रूही फिल्म से। ये गीतकार हैं इस गीत के आईपी सिंह, सचिन जिगर, और संगीतकार हैं सचिन जिगर।

की एंड का फिल्म से अगला गीत सुनिए मीत ब्रदर्स जैज थामी अदिति सिंह शर्मा की आवाज़ में और कुमार ने लिखे हैं इसके बोल और संगीतकार हैं मीत ब्रदर्स।

अगला गीत सुनिए मोनिका ओ माई डार्लिंग फिल्म से, मिकी मैक्लेरी अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तव की आवाज़ है और अरुण ग्रोवर ने लिखे हैं इसके बोल और अचिंत का है संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अगला गीत सुनिए नमस्ते इंग्लैंड फिल्म से दिलजीत दोसांझ, बादशाह और आस्था गिल की आवाज़ है। गीतकार और संगीतकार हैं बादशाह।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब समय है सूचना का। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो भी श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर है 2660902 या 2660903 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 यानी 0755।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ECI नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए

0: वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए, इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम का आकर्षण होगा आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। शाम 8 कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। शाम 8:15 और रात 9:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल जगत प्रस्तुत होगा। रात 10 आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में ख्याल गायन का। राग होगा भीम पलासी। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 9 मई की सभा में। सबसे पहले मुख्य कार्यक्रम जो कल सुबह 11 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन और 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत कार्यक्रम में प्रेम लता नागदेव की आवाज़ में निमाड़ी गीतों का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम, 10 जिले की चिट्ठी, 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम और 10 बजकर

20 मिनट पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला प्रस्तुत होगा। अब कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण जो आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे सुनिएगा। दोपहर 12 बजे आपकी फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जादूगर को सलाम की 10वीं कड़ी प्रस्तुत की जाएगी। दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। और ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। शाम 5:33, 6:30 और 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कल शाम 6 बजे विशेष भेंट वार्ता सुनिएगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति में। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कल शाम 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। कल रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी संस्कृति भारती। और आकाशवाणी दिल्ली के ही अनुप्रसारण में कल रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। इसी के साथ आज की शेष सभा और कल की सभा के कार्यक्रमों का विवरण संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहे। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे दर्शन पूजन। अगले 1000 दिनों तक होंगी विशेष प्रार्थनाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर, कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। और देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, वाणिज्यिक आपूर्ति 70% बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया।

0: प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से हराया है और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। श्री शुभेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट की। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं ने संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा भी की। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक आपूर्ति करीब 70% तक बहाल हो चुकी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी गई है। मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है।
3: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
1: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व रेडक्रॉस दिवस पर भोपाल में आयोजित सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और रेडक्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांत जीवन जीने के सच्चे मार्गदर्शक हैं। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों से 53.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और करीब 9,500 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है और उपार्जन केंद्रों पर तौल पर्ची बनाने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बाणसागर सर्किट हाउस में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने शहडोल उमरिया मार्ग और विजय सोता पुल निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों, सांदीपनी विद्यालय और जर्जर शासकीय विद्यालयों की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,21,392 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 847 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। ऊर्जा विकास निगम के MD अमनबीर सिंह बैस ने बताया कि अच्छा काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाह वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए

वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें जालंधर जम्मू तवी कटरा, बटाला पठानकोट और बनिहाल बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड, डीएलएड, एमएड समेत विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी rsk.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डीएलएड के लिए 15 मई से, बीएड के लिए 25 मई से और एमएड के लिए 1 जून से आवेदन शुरू होंगे। कुछ ही देर बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कल रात लखनऊ में बारिश से बाधित मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से मात दी। मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मई को गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां बिजली बिल, बैंक रिकवरी, तलाक, सड़क हादसे और चेक बाउंस जैसे पुराने मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा किया जाएगा। अशोकनगर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा कर आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। आगरमालवा के कंपनी गार्डन में जिला बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, सांसद और संभाग प्रभारी शामिल रहे। शिवपुरी में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही करने वाले 12 कर्मचारियों और अफसरों को नोटिस थमाया गया। शहडोल में वन विभाग तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जंगली जानवरों से बचाव के तरीके बता रहा है और अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भैया जिजी बिना जनों को आरती जिजी की राम राम पहुँचे। भैया जिजी हरो, देखो ई टाइम खूब जम के गर्मी पड़ रही है, सो खूब भैया आपने अच्छे से पैर ओढ़ के ही घर से निकलियो। पैर ओढ़ के मतलब अपने सिर को ढक के, और जब भी घर से निकलियो तो खा के जरूर निकलियो, क्या कि खाली पेट जो है लू लगवे को डर सबसे ज़्यादा बनो रहे थे। तो अपन

के संगे पानी भाव चाहिए, सिर ढको भाव चाहिए और पेट भी अपनो भरो हो चाहिए, तभी अपन अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आज है 8 मई, सो आज पूरा जो विश्व है वो मना रहा है रेड क्रॉस दिवस के रूप में। और जा दिवस मनावे को अगर अपन बात करें का उद्देश्य है, काय काजे ये बनाओ जाते हैं, तो जा उद्देश्य है कि जन जन में उदारता की भावना, सहानुभूति और निस्वार्थ रूप से सबकी काजे एक ऐसी भावना को विकसित करवो के है कि हमें सबको अपने आपस में मिलजुल के रहने हैं। ई अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को शांति के लाजे कछु अच्छो करवे के लाजे प्रोत्साहित करो जात है। और हर बरस एक नए विषय के संगे जो दिवस मनाओ जात है। ई बेर को विषय जो है वह है मानवता को जीवित रखवे को। और आज के दिना लाखों स्वयं सेवक जो है ई को अपने नाम से समर्पित कर देते हैं, लोगों की सेवा भावना के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करत हैं। और जब अपन सेवा भाव की बात आ जात है तो कहूँ ना कहूँ अपन को ये भी लगत है कि अपन सारे जो रोग हैं उनसे अपन अपने आप को बचा के रखबे। और जब अपन बचे रहते हैं तो अपना कुछ मन हो जाते हैं कि अपन कछु गा बजा भी लेवे। तो अपन आज सुनत हैं यादों की बारात से आशा भोसले को और गीतकार हैं मजरू और संगीत दौ है राहुल देव बर्मन ने।

0: रही है जी हरो, अब बिरिया हो रही है बुंदेली समाचारन की, तो सुनत हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं आरती शर्मा। पीएम मोदी सोमनाथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जय हैं, जिते पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होवे पे जश्न मनाओ जय है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1957 को ई मंदिर को उद्घाटन करो हतो। श्री मोदी ने एक अखबार में लेख लिखे में कहो है कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत को प्रतीक है और जो मंदिर बतात है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहत है। उनने सरदार पटेल को याद करत भाई कहो कि पटेल ई मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानत थे और अब मंदिर के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देवे के लाजे अगले 1000 दिनों लो विशेष प्रार्थनाएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल में अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हुई हैं। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल को नेता चुनो गो। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल को नेता चुनो गो। श्री शाह ने बताओ है कि बैठक में केवल श्री अधिकारी को ही नाम नेता के लाने प्रस्तुत करो गो हतो। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा करी। नई भाजपा सरकार को शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई है। मोहन यादव नितिन नवीन से करी मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट करी। उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करो। ई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई है।

0: भोपाल में मीडिया महाकुंभ शुरू। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होवे की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन लो मीडिया महाकुंभ चल है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उद्यंत मर्तंड नाम से जो समारोह 10 मई को आयोजित कर है। ई महाकुंभ में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और फिल्मकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी समेत देश भर के दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान ई में शिरकत कर हैं। ई मौके पर 200 साल की पत्रकारिता की यात्रा पर एक खास प्रदर्शनी भी लगाई गई है और 8 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट लाइव कार्टून शो भी पेश कर हैं। आकाशवाणी के 90 साल। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे हुए के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित करी गई। ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन की खत्म भई। इस तरह की दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह आयोजित करी गई। रेलवे सुरक्षा कवच। रेलवे में स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगावे की मंजूरी दे गई है। जी पे करीब 362 करोड़ रुपए खर्च हुई हैं। फिरोजपुर डिवीज़न के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीज़न के 446 किलोमीटर रूट पे जो सिस्टम लगाओ जे है, कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगा के टक्कर और दुर्घटना को रोकत है। मकान गणना। सागर जिले में मकान गणना को महाअभियान तीव्र गति से संचालित करो जा रहा है। अब तक जिले की 11 लाख से अधिक की आबादी के मकानों की गणना को कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करो जा चुको है। प्रशासनिक स्तर पर की जा रही सतत मॉनिटरिंग के फलस्वरूप जिले के 366 से अधिक HLB में मकान गणना को कार्य पूर्ण कर लगाओ है, जबकि शेष बचे क्षेत्रों में कार्य तेजी से प्रगति पे है। मौसम। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़वे वालों है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी हिस्सों के लाजे ऑरेंज अलर्ट जारी करो है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, पांडुना में आज तेज आंधी के संगे ओले गिरवे की प्रबल संभावना है, जिसे किसानों की फसल को नुकसान हो सकत है। मुरैना में बिजली गिरवे और ग्वालियर विंध्य क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदलवे को अनुमान है। उतई छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीरी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला हुई है। उतई कल रात लखनऊ में बारिश से बाधित मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से मात दी। मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच को खिताब दिलाओ। बुंदेली समाचार इतनी संपन्न होते हैं।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया हरो, आज है शुक्रवार और आज के दिन आपनों को इंतजार होते है कि आप अपने पसंद के फिल्मी गीत सुनो, तो आपोरा किलाने प्रसिद्ध है आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। और जो हमारे पास पहलो पत्र आ गया है वो है हमारे पास नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन को, जे सभी जने सुन वो चाहते हैं फिल्म सिलसिला में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, संगीत है शिव हरि को और गीत है जावेद अख्तर को। तो सुन में जो गीत

भैया हर रोग कई बार ऐसे होते हैं कि अपने रक्त में ऐसे विकार आ जाते हैं जिनसे कि हमारे शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं, और जो विकार आते हैं वे कई बार हमारे जो अनुवांशिक रूप से, मतलब हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे माता पिता से हमें जो अनुवांशिक रूप से जो बीमारी मिल जाते हैं, जिसको अपन थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। तो आज पूरा जो विश्व है थैलेसीमिया दिवस के रूप में मना रहा है, और जा दिवस मनावे के पीछे यही उद्देश्य है कि जन जन लो ई बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करो जाए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ई बारे में सचेत करें कि उनके उपचार में हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और जो थैलेसीमिया से पीड़ित लोग हैं उनके लाने हम सम्मानपूर्ण रूप से उनको सही रूप से इलाज के लाने उन्हें प्रेरित करें। सबसे बड़ी बात जा है कि अगर कोनो भी विवाह करत है तो उसे पहले वे अपने जो है खून की जांच करा लेवे। कई बार एक ही अगर ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, एक ही सो खून को वो ग्रुप होते हैं तो ई रोग के बढ़वे की संभावना ज़्यादा बन जाते हैं। तो जिनको भी थैलेसीमिया रोग है उनको सम्मानजनक जीवन जी सकें उनके लाने ज़रूरी है कि उनको समय समय पर स्वास्थ्य जो नीतियाँ हैं उनके बारे में उनको जानकारी देते रहें, और कई बार जो है इको अलग अलग विषय के रूप में हर साल बता करके और लोगों को जागरूक करो जाए है। जैसे ई बार को विषय है अब और छिपा नहीं है, अनजाने लोगों को ढूंढना है, मतलब हमें थैलेसीमिया के

को ढूंढना है इस विषय के आधार पर जो दिवस इस वर्ष मनाओ जा रहा है। तो हम सवाई को जो उद्देश्य भाव चाहिए कि हमें लोगों को जागरूक करने हैं और ई बीमारी को ख़त्म करने हैं। जब लोग हम अपने सवाई जन को जो जागरूक ना करते हैं कि हमें अपने जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में जानकारी भाव चाहिए जिससे कि हम ई बीमारी को कम कर सकें। और अगलो पत्र जो है हमारे पास वो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर को, और छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक, जावेंद्र कुमार वर्मा को। ये सभी जने सुनवो चाहत हैं फिल्म खेल खेल में आशा भोसले को, संगीत है आर डी वर्मा को और गीतकार हैं गुलशन बावरा। तो सुनाते हैं जो गीत।

भाई यारो, जैसे गर्मी में अपन को अपनों ध्यान रखो की बहुत जरूरत होते है, वैसे ही अपने जो खेती किसानी के सांगी हैं, अपने चाहे ढोर बचेरी हूँ, अपने पशु हुए, सबको अपन को ध्यान रखो जरूरत होते है। कहे के अपने पशुओं को भी गर्मी लगत है और उनसे उनको बचाव करवो भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो जा है कि हम उनको ठंडो और ताजो पानी दिन में 2-3 बार पिया उतरेवे। और दूसरी बात जा है कि जब भी हम उनको बांधवें तो छायादार और हवादार जो स्थान होए वही अपनी उनकी सारन में उनको बांधें। और सबसे बड़ी बात जा है उनको खाबे खिलाने, अपन चारा या भूसा खिलावे दोपहरिया में, उन्हें गौशाला से निकालवे नहीं। काहे कि अगर अपन ने दोपहरिया में उनको छोड़ दो बाहर तो उन्हें भी लू लगवे को डर बनो रहते है। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको नमक खवावे, काहे कि नमक खावे से उन्हें पानी की प्यास लगत है और वे भी खूब ज़्यादा पानी पियत है, जिससे कि वे उनके शरीर में तरावट बनी रहते है। और जा बात ध्यान रखने हैं कि अगर अपन गौशाला में या उनको सार में बांध रहे हैं

तो ऊखों अपन को धूप से बचाव की जरूरत है। या तो अपन उनकी गौशाला को पुआल से ढक देवे या खस के टाट डाल के अपन उनको भी ठंडो रख सकत हैं। और उन्हें 24 घंटे साफ और ताजो पानी सबसे ज्यादा जरूरी होत है। सुबह और शाम को ही अपन उनको नहावें, दोपहरिया के ना नहावें, काहे कि उन्हें लू लग सकत है। और अगर अपन को जो सुविधा है तो उन्हें उनके गौशालाओं में भी पंखे और कूलर लगा के रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात को ध्यान रखें कि उनको जो भी खाना देवे या सानी देवे उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर कहूँ ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको लू लग गई है तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से उनको दिखा के उचित इलाज भी अपन करावे। और अब देखो अगलो पत्र है हमारे पास, वो है सपना संगीता रोड इंदौर से। लाल फतेह सिंह चंदानी, लीला फतेह सिंह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया को, ये सभी सुनवो चाहते हैं। फिल्म वचन में मोहम्मद रफ़ी को, संगीत है रविचंद्र को और गीतकार हैं प्रेम धवन। तो सुनाते हैं अपन भी इनके संगे।

भैया अगले वो पत्र है हमारे पास शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और के श्रीवास्तव को, और अनूपपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और उनके मम्मी पापा और लवी श्रीवास्तव को। तो जे सभी जने सुन वो चाहत हैं फिल्म कटी पतंग को, गीत किशोर कुमार के स्वर में, संगीत है आर डी वर्मा को, गीतकार हैं आनंद बख्शी, तो सुनत हैं।

यारो अगलो पत्र है मेरे पास देवा से, नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत और राजा रामनगर देवा से, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, चीकू सल्लू को, और उपाध्याय नगर देवा से मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा को। जे सभी जने सुनवो चाहते हैं। फिल्म जवक में स्वर है लता मंगेशकर को और संगीत है चित्रगुप्त को और गीत है प्रेम धवन को। तो सुनत है जो गीत।

मैया हरो अबिरिया है सूचना की। सो आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10/5/2026 को यानी रविवार के दिन शाम 7:30 बजे से 8 बजे लो सजीव फोन इन कार्यक्रम को प्रसारण करो जे है। ई हेलो ग्राम सभा के लाने विषय है जायद उद्यान की फसलों पोषण प्रबंधन और सामयिक कार्य। ई कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10/5/2026 यानी रविवार को संजय 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 और 2660903 पे फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लेवे। दिनांक 10/5/2026 रविवार को संजय 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर हुई है 2660902 और 2660903 और भोपाल को एसटीडी कोड है 0755। तो अवश्य आप जो सूचना को ध्यान में रखत भए अपने फ़ोन लगावे और अपनी समस्याओं को समाधान लेवे। और अब अगलो पत्र है हमारे पास पटेल नगर मालोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया गीता रानी जाजौरिया गगनदीप जाजौरिया बेबी आरजू जाजौरिया को जे सभी सुनबो चाहते हैं फिल्म कटी पतंग में किशोर कुमार को और संगीत है आर डी बर्मन को और गीतकार हैं आनंद बख्शी। तो सुनते हैं जो गीत

मुहैया आ रहा हूँ, अबिरिया हो रही है आप औरों से आज्ञा लेवे की। सो चलवे से पहले कल के कार्यक्रम सोई बताओ चलें। भुंसरा सुने 6:45 पे कृषि चर्चा, जायद में सब्जियों की देखभाल, वाचक शुरू हुई है डॉक्टर विनोद कुमार कनौजिया को। और संजय सुने प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, और अब आरती बहन को आज्ञा दो। राम राम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता केया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा।
5: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। खेया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
6: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे

0: राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेके घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
1: जी।
0: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपरा साफ करना है
1: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो सुवेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
2: अनुबल जी, आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी, पिछले चुनाव से पहले आए थे और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है उसको मुकाबला करना, आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी
1: जी,
2: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के ए में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की जिसकी वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए, पहली बात, जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि SIR के माध्यम से जितने फर्जी वोटर्स गोस्ट वोटर्स भी निकल गए, पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
3: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी,
3: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं, 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं, सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, अप्रैल 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है। वक्फ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं, वो कभी हम सोच भी नहीं कर सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
1: जी, जी।
3: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
1: और इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़ें, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
4: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: मैं केया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
0: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का, मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था हम बंगाली हम लोग पीछे जा रहे थे, तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है।

0: आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति देके गए हैं, पहला बात। दूसरी बात यह कि 45 दिन के अंदर जो 7th पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बैनर्जी जी वो जनता के पैसा, टैक्स की पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह चली गई। तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है
1: जी।
0: वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है। हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया। तो चुनौती तो बहुत सारे हैं और एक दिन में तो नहीं होगा, ये तो कोई एक महीना में भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार। और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
2: बिल्कुल अनुभव जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
1: जी,
2: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाले थे ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कटबनी होगी। देखिये, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार, पुलिस, कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उसमें आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात, शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात, लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए, आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बैनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
3: देखिए, ममता बैनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहा है लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं,

0: बीजेपी की बात है,
1: जी
0: और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका उनको ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए, तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
1: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है, भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है। पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बंगला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये।
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और केया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिपेक्ष में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शोले फिल्म से सुनिए ये गीत, राहुल देव वर्मन की आवाज है, आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल हैं और संगीत भी है RD बर्मन का।

अगली आवाज़ सुनिए आशा भोसले की खुशबू फिल्म से। गुलजार के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब जूली फिल्म से ये अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है राजेश रोशन का।

अगली आवाज़ सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की गब्बर इज बैक फिल्म से। मनोज यादव के लिखे हुए बोल हैं और संगीत में पिरोया है चिरंतन भट्ट ने।

आप सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत विरासत फिल्म से कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज़ है, जावेद अख्तर के लिखे हुए बोल और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं

कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता

0: ता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही काल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है।

0: मिशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा।

0: था। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।

0: बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VC के IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: कल सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेरे इख्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजीकर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी।

तोड़ दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन और बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमीन के लिए मौजूदा पेरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंग यू जू को सीधे सेटों में 0 के मुकाबले 6-0 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ एक जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की किम श्योन से होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनिए। आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं, और वार्ताकार हैं पंकज शुक्ला।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपीये। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 अब अपने बेहद रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। जैसे जैसे लीग चरण के मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्लेऑफ की तस्वीरें और भी अधिक दिलचस्प होती जा रही है। कई टीमें शानदार प्रदर्शन के साथ शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष कर रही है, तो वही कुछ टीमें अंतिम अवसरों का लाभ उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच आईपीएल का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और हर मुकाबला नई संभावनाएं लेकर सामने आ रहा है।

आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं यह वार्ता। वार्ताकार है पंकज शुक्ला।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंच चुका है और आईपीएल 226 प्लेऑफ की रेस सबसे बेहद दिलचस्प हो गई है। यह टूर्नामेंट 28 मार्च 2026 को मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के साथ शुरू हुआ था। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें कुल 74 मैच खेल रही हैं जो 13 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले सीजन की तरह आईपीएल 2026 के लीग स्टेज के अंत में टॉप फोर टीमें ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर 14 मैचों के बाद टीमें समान अंक पर रहती है तो नेट रन रेट के आधार पर पॉइंट्स टेबल में उनकी रैंकिंग तय होगी और इसके हिसाब से वे मैच खेलेंगी। इस बार टॉप फोर की लड़ाई बेहद कड़ी है क्योंकि अभी तक कोई भी टीम पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले मुकाबले हर टीम के लिए करो या मरो जैसे साबित होने वाले हैं। कुछ को हार का तुरंत नुकसान हो सकता है तो कुछ के लिए हार आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है। लीग के 49

मैच हो चुके हैं और प्लेऑफ की तस्वीर भी एक हद तक साफ दिखती है। सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की स्थिति मजबूत है। हालांकि इन टीमों के पिछले मैचों में प्रदर्शन और दूसरी ओर तालिका में नीचे मौजूद टीमों के प्रदर्शन ने प्लेऑफ की जंग को रोमांचक बना दिया है। अभी कोई भी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं है। मुंबई, लखनऊ और कोलकाता जैसी टीमों की संभावनाएं काफ़ी कम तो हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात और दिल्ली के लिए अब बचे सभी मैच करो या मरो के हैं। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कौन सी टीमें प्लेऑफ पे पहुंचने में सफल होंगी। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराकर और उसे दूसरे स्थान पर धकेलते हुए पहला स्थान हासिल किया। यह जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं 7 मई तक के हुए मुकाबलों की है। गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को हराकर आईपीएल में अपना तीसरा मुकाबला जीत लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है। अगर वह अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है, उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल के 50वें मुकाबले में 6 रनों से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स की इस जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 111 रनों की पारी खेली। मार्श ने 49 गेंदों पर शतक जड़ा और वह लखनऊ के लिए आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने। इस मामले में उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत के 54 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की आरसीबी के खिलाफ इस जीत के बाद यह उत्सुकता है कि क्या अभी भी लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले अपने बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे। लखनऊ के अगले 4 में से 2 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हैं, वहीं एक एक मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स से है। अगर लखनऊ सुपर जॉइंट्स ये सभी 4 मैच जीतने में कामयाब रहती है तो उन्हें 8 अंक मिलेंगे। फिलहाल उनके खाते में 6 पॉइंट हैं। इन 8 अंकों के साथ वह 14 अंकों तक पहुंच सकती है। अब अंक तालिका में टीमों की स्थिति पर हम नजर डालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स 10 मैचों में 13 अंक लेकर दूसरे। आरसीबी 10 मैचों में 12 अंक लेकर तीसरे। राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों में 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात जॉइंट 10 मैचों में 12 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों में 10 अंक लेकर छठे। दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों में 8 अंक लेकर 7वें। कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों में 7 अंक लेकर 8वें। मुंबई इंडियंस 10 मैचों में 6 अंक लेकर 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 10 मैचों में 6 अंक लेकर 10वें स्थान पर है। यहां ये बताना चाहूंगा कि समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में जो अंतर है वो उनके रन रेट की वजह से है। यह तालिका अभी जब हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं 7 मई तब तक की है, इसके बाद इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अब प्लेऑफ समीकरण की यदि हम बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की करने के लिए अब अपने बाकी 3 मैचों में से सिर्फ 1 जीत की आवश्यकता है। टीम 16 अंकों के सुरक्षित आंकड़े तक पहुंच सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी बेहद मजबूत रही है और इसी वजह से उनका नेट रन रेट भी शानदार है, जो टाई की स्थिति में बड़ा फायदा देगा। टीम सिर्फ प्लेऑफ की नहीं बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने की भी मजबूत दावेदार मानी जा रही है। वहीं आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी मैचों में से 3 की जीतने की जरूरत है। टीम 16 से 18 अंकों तक पहुंच सकती है। उनका नेट रन रेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत में से एक है, इसलिए 14 अंक पर भी टीम क्वालिफाई कर सकती है अगर बाकी नतीजे उनके पक्ष में गए। आरसीबी शीर्ष 2 में जगह बनाने की भी प्रबल दावेदार है। राजस्थान रॉयल्स को भी प्लेऑफ में सुरक्षित पहुंचने के लिए 2 जीत चाहिए, जिससे टीम 16 अंकों तक पहुंच जाएगी। हालांकि टीम का प्रदर्शन इस सीजन में उतार चढ़ाव भरा रहा है। राजस्थान रॉयल्स को अपने नेट रन रेट को भी मजबूत बनाए रखना होगा ताकि पीछे चल रही टीमों से वह आगे रह सके और अपनी स्थिति प्लेऑफ में मजबूत कर सके। जहां तक गुजरात टाइटंस की बात है तो गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमों में बराबर अंक पर हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात टाइटंस को अपने आखिरी 4 मैचों में कम से कम 2 बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट सुधरे और वो राजस्थान रॉयल्स या ऊपर की 4 अन्य टीमों में से किसी को पीछे छोड़कर अपनी जगह बना सके। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी 4 मैचों में से कम 3 मैच जीत दर्ज करवानी होगी। टीम 16 अंकों तक पहुंच सकती है यदि वह यह जीत दर्ज करेगी तो। सीएसके का नेट रन रेट फिलहाल पॉजिटिव है, जो अन्य टीमों के 14 या 16 अंकों पर फंसने की स्थिति में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी कोई टीम 16 या 14 अंकों में फंस जाती है, वहां अगर रन रेट से मुकाबला होगा तो चेन्नई सुपर किंग्स की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं।
दिल्ली कैपिटल

रन्स के लिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने सभी बाकी मैचों को जीतने ही होंगे। एक भी हार उनकी उम्मीद को लगभग खत्म कर देगी। इसके अलावा टीम का खराब रन रेट भी बड़ी परेशानी का सबब है। इसलिए दिल्ली को न केवल जीत चाहिए बल्कि इस जीत का अंतर भी बड़ा चाहिए, तभी वो सुपर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में सफल हो पाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी सभी 5 मैच जीतने होंगे, जिसमें से टीम अगर ये मैच जीती है तो उनका स्कोर 17 तक पहुंच सकता है। हालांकि उनका खराब नेट रन रेट चिंता का विषय है। ऐसे में 15 अंक भी शायद काफ़ी नहीं होंगे, उन्हें अधिक अंक जुटाने के लिए ही मेहनत करनी होगी। मुंबई इंडियंस को अपने सभी बाकी मैच जीतने होंगे, साथ ही ये उम्मीद भी करनी होगी कि 12 अंकों पर मौजूद बाकी टीमें अपने अधिकतर मुकाबले हार जाएं। यानी मुंबई को अगर पहुंचना है तो उसे यह भी दुआ करनी पड़ेगी कि जो दूसरी टीम है वो हारें और मुंबई इंडियंस के बराबर अंक के साथ वो हासिल ना कर पाए। मुंबई का खराब नेट रन रेट उनकी प्लेऑफ उम्मीदों के सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर हमें दिखाई देता है। ये टीमों की स्थिति है और इसमें अधिकांश हमें दिखाई देता है कि न केवल खुद का प्रदर्शन बेहतर करना होगा बल्कि जो प्रतिस्पर्धी दूसरी टीम है उनके प्रदर्शन पर भी बाकी की जो 6-4 टीमें हैं उनका प्रदर्शन, उनकी उम्मीद और उनका रास्ता निर्भर करेगा। यह जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं 7 मई तक के हुए मुकाबलों की है। इसके बाद लगातार मैचों और उनकी हार जीत के हिसाब से यह तालिका और इसके अंकों में परिवर्तन संभव है। यदि हम ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस की बात करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और इस IPL में हमने देखा है कि काफ़ी तेजी से रन बने हैं और बॉलिंग का स्तर भी, बॉलिंग रन रेट भी काफ़ी बड़ा है, तो इस पर अगर हम बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स मैच के बाद ऑरेंज कैप एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के पास आ गई है। क्लासेन ने 43 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली थी। क्लासेन के सीजन के 11 मैचों की 11 पारियों में 494 रन हो गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के ही अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। अभिषेक के 11 मैचों की 11 पारियों में 475 रन हैं। पर्पल कैप RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास है। भुवनेश्वर ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। दो नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज हैं। कंबोज ने 10 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। IPL 2026 में हो रही रनों की बारिश ने गेंदबाजी के आंकड़े भी बिखाड़े हैं। एक समय 4 ओवर के कोटे में 30-32 रन बनना सामान्य माना जाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़कर 45 से 50 रन तक पहुंच गई है। यानी एक ओवर में 50 रन तक बन रहे हैं। अगर कोई गेंदबाज 4 ओवर में 50 रन खर्च करते हुए 1-2 विकेट निकाल ले तो उसे अच्छा स्पेल माना जाने लगा है। लेकिन इसके बाद भी IPL 2026 के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब गेंदबाज इससे ज़्यादा रन लुटा बैठे हैं। यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इस सीजन किन गेंदबाजों की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, किन गेंदबाजों ने एक ओवर में सर्वाधिक रन खर्च किए हैं। इसकी बात करते हैं तो IPL में सबसे महंगे स्पेल की बात करें तो इसमें पंजाब किंग्स के गेंदबाज सबसे आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले जेनवियर बार्टलेट ने 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 ओवर में 69 रन दिए। यह इस सीजन की अब तक की सबसे महंगा स्पेल रहा है। उन्हें एक विकेट मिला था। इसके बाद अर्शदीप सिंह का नाम आता है। बाएं हाथ के इस पेसर ने 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवर में 68 रन दिए। इसके अलावा साकिब हुसैन, जो सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, जिन्होंने 4 ओवर में 62 रन दिए हैं। पंजाब किंग्स के मार्को यानसान ने 4 ओवर में 61 रन दिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के प्रफुल्ल हिंगे ने 4 ओवर में 60 रन दिए हैं। ये ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने सीजन में 60 या उससे ज़्यादा रन दिए हैं। पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे अर्शदीप ने IPL 26 में अब तक सबसे ज़्यादा रन दिए हैं। यह गेंदबाज 10 मैचों में 38 ओवर फेंकते हुए 396 रन दे चुका है। यह इस सीजन में सर्वाधिक हैं। उन्हें अब तक 11 विकेट भी मिले हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक रेट 10.42 का रहा है। इसके बाद इस सीजन के सबसे ज़्यादा रन खर्च करने वाले खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा हैं। उन्होंने 38.2 ओवर में 362 रन दिए हैं। गुजरात टाइटन्स के कगिन्सो रबाडा ने 39 ओवर में 360 रन दिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के टी नटराजन ने 31.5 ओवर में 356 रन दिए हैं। वहीं पंजाब के मार्को यानसन ने 35.2 ओवर में 350 रन दिए हैं। यह IPL का एक दृश्य था जो हमने आंकड़ों के जरिए और टीमों के स्तर, उनके प्रदर्शन और उनके नेट रन रेट के स्तर पर खींचा है। हमें उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन और आक्रामक प्रदर्शन के जरिए खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में सफल होंगे। आप आनंद लीजिए IPL का और क्रिकेट के उस हुनर का जो दिनों दिन निखरता जा रहा है। धन्यवाद।

0: अभी आपने आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थे पंकज शुक्ला। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। कार्यक्रम में आपने भेंट वार्ता सुनी आईपीएल में टीमों की स्थिति एवं संभावनाएं, वार्ताकार पंकज शुक्ला से। प्रस्तुतकर्ता व कार्यक्रम संयोजक थे मनीष गजभिय। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सरफरोश फिल्म से गीत सुनिए कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ में समीर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का।

अगली आवाज़ सुनिए आशा भोसले और साथियों की फिल्म तक्षक से। सुखविंदर सिंह और तेजपाल कौर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है AR रहमान का।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नंदिनी रतले और अब शुरू करते हैं आपकी फरमाइशी पत्रों में लिखे हुए गीतों का सिलसिला। और सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्यासा फिल्म से गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और इसकी फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन ने। और इसके अलावा लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने। साथ ही राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके समस्त राजावत परिवार ने।

और अब अगली फरमाइश आप सुनेंगे जीवन धारा फिल्म से। गीत गाया है आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने, और हाँ फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं मोहम्मद हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, इसके साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, साथ ही जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट ने, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद का।

अगली फरमाइश की है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल ने, राजदीप राजेश ने, राशि राजेश ने, श्रीमती शीतल राजेश ने। इसके साथ ही स्टार से रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने, और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: अगली आवाज़ आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म चरस से, और इसकी फरमाइश की है, सप्रेम नमस्ते भेजा है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले ने। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया ने, और घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

और अब आप सुनेंगे नूरी फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में, जिसके लिए हमें पत्र भेजा है अभिनंदन के साथ कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय ने, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय ने, इसके साथ ही सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने, और नेपानगर से मोहन मुदालियार, आरुष आरक्षिता और राजेश ने। तो चलिए सुनते हैं।

और अब कार्यक्रम में आखिरी गीत शामिल कर रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म से मुकेश की आवाज़ है। फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक और पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। तो चलिए आनंद लेते हैं।

इस गीत के साथ अब लेते हैं आज के आपके फरमाइश कार्यक्रम से विदा। अगले अंक में फिर कुछ और आपके फरमाइश पत्रों को शामिल करेंगे और सुनाएंगे आपके पसंद के गीत। आज के लिए धन्यवाद और आपके साथी नंदिनी रतले को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए ख्याल गायन का पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में। राग है भीम पलासी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आपने सुना ख्याल गायन पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में, राग था भीम पलासी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड

0: ये संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आपने सुना ख्याल गायन पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में, राग था भीम पलासी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन और DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।